FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह के 29 तारीख, तदनुसार 20 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 और 44 सेकंड हुए हैं। हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। सुबह के ठीक 6 बजने को हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों की साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में

सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ हस्ताक्षर अभियान

0: विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

चिंतन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, जीवन में पहली सफलता की बात रुकी नहीं, क्योंकि यदि आप दूसरे प्रयास में असफल हो गए तो लोग यही कहेंगे कि आपकी पहली सफलता भाग्य की वजह से मिली थी। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

पेश है झरोखा में कार्यक्रम विवरण। सात बजे कार्यक्रम प्रसारित करेंगे भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के ये प्रोग्राम होगा 7:30 पर। मनोरंजन और सूचनाओं से भरा कार्यक्रम आज का अखबार हम लेकर हाजिर होंगे 9:30 पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा 10:05 पर। आज का टॉपिक वर्ल्ड क्लीनअप डे के उपलक्ष्य में है। आज का टॉपिक है स्वच्छता भी उत्सव है, इसे मन से मनाएं। 11 बजे सुनिएगा प्रोग्राम यादों का कारवां। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनिएगा। आज इसका दूसरा भाग सुनवाया जाएगा।

12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनिएगा 2:30 पर। नाट्य तरंग प्रोग्राम होगा 3:30 पर। आज इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे नाटक स्वप्नवास वादत्ता का दूसरा भाग।

चार बजे होगा कार्यक्रम पिटारा। आज पिटारा कार्यक्रम में उजाले उनकी यादों के अंतर्गत आप सुनेंगे संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे पेश करेंगे 5:20 पर। शाम सुहानी कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 5:30 पर। इसमें आज वरिष्ठ नागरिक श्री जगदीप सिंह से रमेश कपूर की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा।

कुछ शब्द श्रवण कीजिएगा कार्यक्रम अमृतवाणी के तहत शाम 6:30 पर। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में सुनिएगा महावीर चक्र कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा शाम 7:00। कुछ पंजाबी गीत लेकर हाजिर होंगे शाम 7:47 पर। रात 8:00 होगा प्रोग्राम हवा महल, इसमें आज आप सुनेंगे झलकी चिट्ठी। आज के फनकार कार्यक्रम आधारित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। दस बजे सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत। पंजाबी गीतों का कार्यक्रम सुर सांझ लेकर हाजिर होंगे रात 10:32 पर। ये था झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम श्री रामचरितमानस।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने इनकी संगत की।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया।

0: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे दे भाई।
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
5: गणपति बप्पा।
6: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
0: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
7: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार, स्वागत है।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओ रे हे।
1: संगीत के साधक
2: ओ।

0: 2 बीघा जमीन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें थी। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।
1: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस

0: टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाए।
1: मैदा टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में हमदर्द फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे प्रेम धवन, संगीतकार थे अनिल विश्वास।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बाया हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ठोकर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, मजाज लखनवी के बोल थे और सरदार मलिक का संगीत था। इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने रामी धोबन फिल्म से लिया था, गीता रॉय की आवाज थी, राम मूर्ति चतुर्वेदी की रचना और हीरेन बोस की तर्ज थी। और इसे अभी जो गीत आपने ठोकर फिल्म का सुना, इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: सुई या इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम हम है राहे प्यार के।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत। इस गाने में आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: कसम।
1: आपकी कसम फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की ये रचना, आपने सुनी राहुल देव वर्मन की तर्ज थी। अब लीजिए सुनिए दोस्त फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। इसे आनंद बख्शी ने लिखा है।
2: कैसे जीते हैं भला

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ।

हम शकल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आर टी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम है राही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: हाथ की सफाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
4: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
3: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
4: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
3: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
4: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

कसौटी फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। लीजिए अब सुनिए कागज की नाव फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और मनहर की आवाजें हैं, नक्श लायलपुरी की रचना, सपन जगमोहन की धुन।

0: कागज की नाव फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें आशा भोसले और मनहर की थी, रचना नक्श लायलपुरी की थी, संगीतकार थे सपन जगमोहाने सी। गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। सुबह के ठीक 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन

0: के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए

0: कर यानी जीएसटी को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
1: वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। जीएसटी दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
2: जो हाल ही में जीएसटी का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे ही जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को उचित लगे कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और फूड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
1: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
3: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
1: पिछले 9 वर्षों में जीएसटी सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
5: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी, क्योंकि वो हियरिंग होनी है तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है। एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं, और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
6: We have to continuously be watchful of the...
7: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
0: मौसम विभाग

0: आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
1: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रो रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी किउमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकू ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सराय का लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए

0: दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें

0: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का।

0: Gems of India Challenge।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
0: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर Gems of India Challenge चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप MyWaves OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
0: Gems of India Challenge।

0: अगला कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: होना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV AIDS फ्री बनाएं। HIV AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: पेशा कार्यक्रम चित्रलोक।
3: कार्यक्रम की शुरुआत बॉर्डर 2 फिल्म के इस गाने से। विशाल मिश्रा, तुलसी कुमार की आवाज़ें हैं।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें विशाल मिश्रा, तुलसी कुमार की थी। मनोज मुंतशिर के बोल थे, विशाल मिश्रा की तर्ज थी। ड्रीम गर्ल टू फिल्म का गीत लीजिए, अब सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं आरको।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
4: एक विलक्षण गायक
5: अरे ओरे
4: संगीत के साधक
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
4: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
5: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
4: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
6: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
4: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अलबेला सजन आयोरे बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित और साथियों के। संगीतकार थे आदित्य देव। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब बारी है एक ब्रेक की।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
1: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
0: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
0: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें,
1: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
0: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
1: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। श्रेया घोषाल के और साथियों की आवाजें थी, गीतकार और संगीतकार थे अमाल मलिक प्रीतम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

आज है वर्ल्ड क्लीनअप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सफाई दिवस। 20 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराने के लिए हमें प्रेरित करता है, साथ ही कचरे की समस्या से निपटने के लिए हमें प्रेरित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सफाई सिर्फ अपने घर या कार्यस्थल की सफाई तक सीमित नहीं है। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, जल स्रोत, समुद्र तट और हमारे आसपास का पूरा पर्यावरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, हमारी साझा जिम्मेदारी है। अनियंत्रित कचरों से जल, मिट्टी, वायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं। ये हमारे सामने एक गंभीर चुनौती है। इसका समाधान केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। कचरा फैलाने वाला हर व्यक्ति कचरे को साफ करने में अपनी उचित भूमिका निभाए, ये काफी हद तक निदान हो सकता है।

घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग रखना, कागज आदि जैसे योग्य वस्तुओं का रिसाइकिल पुनः उपयोग करना, प्लास्टिक के प्रयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थलों को गंदा ना करना और इसी तरह खाने पीने की चीज़ों को यानी भोजन और पानी की बर्बादी को कम करना, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। तो आइए विश्व सफाई दिवस पर हम खुद भी सफाई का ध्यान रखें और अपने परिवार और आसपास के लोगों को सफाई के लिए प्रेरित करें।

बच्चों को अवश्य सिखाएं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और गाना। ये गुलाब गैंग फिल्म का गीत।

माधुरी दीक्षित, स्नेहलता दीक्षित और अनुपमा राग की आवाज़ों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

0: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरोड़ा प्लाईवुड,
3: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत आप कृष्णा की आवाज में सुन रहे थे। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने धुन बनाई थी।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस है। हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों के महत्व को रेखांकित करने और विद्यार्थियों के जीवन में शारीरिक गतिविधियों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्वविद्यालय ज्ञान और बौद्धिक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल के मैदान में सफलता और असफलता दोनों ही का सामना विद्यार्थी को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। आज के जीवन शैली में शारीरिक निष्क्रियता काफी बढ़ गई। कहा जाए तो ये प्रतिबद्धता भी है, जैसे लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना, डिजिटल उपकरणों का अधिक उपयोग, व्यायाम के लिए समय न निकाल पाना स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों में खेल सुविधाओं और नियमित शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और भी आवश्यक हो जाता है।

प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: थे जयदीप साहनी के बोल थे सलीम सुलेमान के तर्ज थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजें थी, मयूर पुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा।

और सोना महापात्रा की आवाज़ों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी शशि डीजे खुशी की, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत, सविता सिंह को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।

0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
1: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: लीजिए अब पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
0: आज का अखबार।

0: ਤੇ ਬੱਪਾ
1: ਬੱਪਾ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋ ਆਪਣਾਪਨ ਤੇ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ
2: आज फिर लेट हो गए।
3: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
2: क्यों बैठे थे बाहर?
3: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
2: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
3: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा प्रमाणन जरूरी किया। सौ सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है हेडलाइंस की, यानी वो खबरें जो बनी देश विदेश की सुर्खियां।

नीट पीजी पहली बार जारी की जाएगी आंसर की, छात्रों से मांगे जाएंगे ऑब्जेक्शन। परिणाम 30 सितंबर को, 30 अगस्त व 5 सितंबर को हुआ था एग्जाम। बिहार में टेंडर घोटाला, पसंदीदा फर्म के लिए 3 बार शर्तें बदले जाने का आरोप। तकनीकी खराबी की वजह से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली लौटी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। गुजरात में जीएसटी में 5,51,057 करोड़ की गड़बड़ी, 63 लोगों के 97% रिकॉर्ड गायब। दुनिया के भूजल संकट में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, 34% भूजल केंद्रों में संकट गहराया। अमेरिका ईरान जंग, एआई ने गलत सूचना दी, चीनी जहाज पर हमले को तैयार हो गया था अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद पर भारत समेत 5 देशों पर 100% तक टैरिफ वाले बिल पर साइन किए, 30 दिन में होगा लागू।

0: ये थी हेडलाइंस यानी वो खबरें जो बनी देश विदेश की सुर्खियां।
1: गणपति बप्पा बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाईयां।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
1: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: एड्स HIV ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब ये गीत।

0: Just chill.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की। अमृतसर के दाना मंडी में वीरवार रात करीब 1 बजे ड्यूटी के दौरान एएसआई हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या के 45 घंटे बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मुख्य आरोपी दीपक सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। पंचकुला रेलवे स्टेशन साइड की ओर जाने वालों को राहत। 712 मीटर सड़क के जरिए कलाग्राम से प्लेटफॉर्म 6 तक होगी कनेक्टिविटी। 2.5 किलोमीटर सफर करना होगा कम। चंडीगढ़ शहर में आज परेड ग्राउंड सेक्टर 17, किसान भवन सेक्टर 35 समेत कई जगहों पर एग्जीबिशंस और एक्सपो कार्यक्रमों का आयोजन। सीबीआई रडार पर निगम के 2 रेगुलर कर्मी, कमिश्नर ने दी पूछताछ की मंजूरी। चंडीगढ़ में गार्बेज यूजर फीस बढ़ाने की तैयारी। घरों से कचरा उठाने की फीस 50 रुपए से लेकर 350 रुपए करने का प्रस्ताव। हरियाणा में 291 जीएसटी शिक्षकों को हटाने पर रोक। और अब खबरें खेल जगत से। बीसवें एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी जापान के नागोया शहर में हुई। फ्लैग मार्च में 45 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ी आज तैराकी, शूटिंग, वुशु, टेकबॉल के 7 मेडल इवेंट में उतरेंगे।

0: ये थी खेल जगत से खबरें।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097 पंजाब।

0: और अब इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम, आज का अखबार यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पत्रकार पायल मेहता के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे जमीनी मुद्दों से गहराई से जुड़ी हुई थीं और राष्ट्रीय मुद्दों की व्यापक समझ के साथ रिपोर्टिंग करती थीं। श्री मोदी ने कहा कि पत्रकारिता के अलावा पायल मेहता लोगों के प्रति अपने स्नेह और आत्मीयता के लिए भी याद की जाएंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। जापान में 20वें एशियाई खेल में आज भारत की टैगबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की उइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया के साथ खेलेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में।

0: ਦੀ ਬੱਪਾ
1: ਬੱਪਾ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋ ਆਪਣਾਪਨ ਤੇ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब, और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
2: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी कि एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
4: हेलो,
0: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। उम्मीद है आप सभी बेहतर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम एक विषय लेकर आए हैं और विषय है वर्ल्ड क्लीनअप डे के अवसर पर। जी हाँ, वर्ल्ड क्लीनअप डे मनाया जा रहा है आज, जिसके उपलक्ष्य में आज का हमारा विषय भी कुछ क्लीनलीनेस से ही है। जी हाँ, स्वच्छता। स्वच्छता को आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टॉपिक है वो ये है, स्वच्छता भी उत्सव है, इसे मन से मनाएं। जी हाँ, स्वच्छता भी उत्सव है, इसे मन से मनाएं। ये है हमारा आज का विषय। और ये विषय, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप हमें, हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सिलसिला और लेते हैं ये कॉल। हेलो चंडीगढ़।
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
4: सर, मैं सुशील शर्मा ठियोग हिमाचल से बोल रहा था।
3: जी, सुशील शर्मा ठियोग हिमाचल से।
4: जी सर,
3: जी स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे स्वच्छता के ऊपर? आप तो हिमाचल से बोल रहे हैं, हरी भरी वादियों से, तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या इसे हम उत्सव की तरह नहीं मना सकते?
4: बिल्कुल सर, ये तो उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: स्वच्छता को और जी, इसको तो अपनी आदत में शुमार करना चाहिए।
3: शुमार कर लेना चाहिए। देखिए, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी इस मामले में, है ना?
4: बिल्कुल, ना केवल अपने घर को लेकिन अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने गांव, गलियों को भी जो है हमें
3: स्वच्छ रखना चाहिए।
4: स्वच्छ रखना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी का भी विजन है स्वच्छता को लेकर, और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी का भी जो सपना था इस तरह का,
3: और देखिए ना,
4: अनुसरण करना है।
3: बिल्कुल, अभी कुछ ही दिनों बाद हम राष्ट्रपिता की गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को मनाएंगे, और स्वच्छता से उन्हें लगाव था, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान चला। और अब वर्ल्ड क्लीनअप डे पर हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे रोज यानी दिनचर्या में शुमार होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, है ना, सफाई का।
4: और एक बात और को।

0: वैसे जो है घर में जो है माता पिता और स्कूल में शिक्षक की भूमिका जो है अग्रणी है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: स्कूल
1: अहम
0: में
1: है,
0: जो है इसमें जो मॉर्निंग असेंबली होती है
1: बिल्कुल
0: उसमें बच्चों को इस तरह के लिए स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए,
1: किया जाना चाहिए,
0: और क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: शिक्षक की भूमिका तो रहती है
1: देखिए ना,
0: बहुत
1: जब
0: कुछ।
1: आपके बड़े आपके सामने ऐसे काम
0: बिल्कुल
1: करेंगे जिसको
0: बिल्कुल
1: आपको देख के लगेगा यार ये तो करने लायक काम है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: इसमें
0: बिल्कुल
1: कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, तो वो ज़रूर शामिल होंगे और उनको हम
0: बिल्कुल
1: एंकरेज भी करेंगे इस चीज़ के लिए, और उनको इसकी कहानियां बना बना कर सुनाएं तो देखिए कितना
0: बिल्कुल
1: मज़ा आएगा,
0: बिल्कुल
1: और वो इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, है
0: बिल्कुल। और
1: ना।
0: घर में जो है माँ बाप मतलब इस तरह की आदतें बच्चों में डालें, खुद भी इस तरह के प्रेरित करें बच्चों को कि सफाई घर में ही नहीं रखनी है, लेकिन अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी समाज के प्रति, हमारे जो है राष्ट्र के प्रति,
1: बिल्कुल
0: अभी भी इसका ये होगा जब हम जो है ना केवल घर में साफ सफाई रखें, ये ना करें कि घर का कूड़ा करकट उठाया और
1: बाहर फेंक
0: पड़ोस में
1: दिया।
0: डाल दिया। इसको
1: बिल्कुल
0: प्रॉपर वो जो है निदान होना चाहिए, सूखे कचरे का, गीले कचरे का, जो
1: गीले
0: अलग
1: कचरे
0: अलग अब
1: का
0: तो इतनी अवेयरनेस है
1: जी,
0: वो, लेकिन फिर भी समझते नहीं लोग
1: हाँ
0: तरह की।
1: लापरवाही कर देते हैं, या यूं कहें आलस में आकर के, अरे कौन करेगा हटाओ
0: बिल्कुल
1: चलो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना।
0: कहीं हम जाते हैं कभी पे रैपर वगैरह हर
1: हाँ,
0: फेंक देने,
1: सड़क
0: मतलब
1: पे चलते
0: एक
1: चलते केले का छिलका फेंक दिया जी, गाड़ी में
0: बिल्कुल
1: बैठे बैठे
0: बिल्कुल
1: खाया
0: बिल्कुल
1: चलो बाहर,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: किसी के
0: ये
1: मुंह पे भी
0: तो
1: जाके लग रहा है, हो सकता है पैर में आ जाए, स्लिप करके गिर जाए, और देखने में
0: बिल्कुल
1: तो वो
0: बिल्कुल
1: अच्छा लगता ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चलिए बहुत
0: इसका
1: अच्छा
0: थैंक
1: लगा जी आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक यू सर, थैंक
1: जी।
0: यू।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है, जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब। और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: हेलो चंडीगढ़, संपर्क लगता है इनसे टूट गया है। हेलो चंडीगढ़ जी, आवाज आ रही है? इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से अगले श्रोता की कॉल लेते हैं। हेलो चंडीगढ़, हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ में।
3: नमस्कार सर जी, मैं अरविंद कुमार गांव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ सर।
2: जी अरविंद कुमार जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज के विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता भी उत्सव है, इसे मन से मनाएं।
3: जी सर, हाँ, ये स्वच्छता का ऐसा है ना सर, इसको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और तभी सक्सेसफुल होगा ये कार्य, संकल्प हमारा स्वच्छता की ओर।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए क्या प्रयास, आपके जहाँ से भी आप बोल रहे हैं, क्या प्रयास आपको दिखते हैं? आपके आसपास लोग क्या कुछ ऐसा करते हैं, या सिर्फ हम किताबों वाली बातें करते रहते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो आगे आते ही नहीं?
3: नहीं सर, हम भी अपने घर के आसपास भी साफ सफाई करते हैं, लेकिन इसमें अभी बहुत कमी है लोगों के मानसिकता में, बहुत कमी है। वो अपने घर घर तक तो सीमित है, लेकिन उससे बाहर का कोई भी बाग, बाहर की तरफ कोई भी काम नहीं करना चाहते।
2: शहरों में चले जाओ, गांव में चले जाओ, अपने घर के आसपास तो ठीक, लेकिन घर की तरफ जो एक मेन सड़क आती है उसके बाहर जैसे ही एंट्री करेंगे तो कूड़े का ढेर मिलेगा।
3: जी बिल्कुल, गांव शहर सभी जगह यही हाल है,
2: सभी जगह यही हाल है। मानो ऐसा रखा हो जैसे स्वागत के लिए रखा है कि कोई आएगा मेहमान तो पहले ये देखेगा स्वागत होगा, ये अच्छी चीज है या बुरी, अब ये तो लोग समझे, लेकिन ऐसा होता है। और हमें समझना है कि स्वच्छता बेहद जरूरी है और इसे उत्सव की तरह मिलकर मनाएं।
3: जिंदगी में आत्मसात नहीं करेंगे ना, तब तक हमें आंतरिक रूप से ही स्वच्छता की ओर बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये महात्मा गांधी जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना तभी सफल होगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, सभी जितने भी हमारे महापुरुष आए हैं, चाहे आप पीर पैगम्बरों की बात करें, गुरुओं की बात करें, है ना, महात्मा गांधी जी, प्रधानमंत्री जी की बात करें, सब ने यही कहा है कि सफाई, बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए। आसपास खुद भी, अपने आप को भी और लोगों को भी जागरूक करें और एक उत्सव की तरह मनाने का मतलब ये है कि सब एक साथ मिलकर, कहीं आपको लगता है कि यार ये कूड़ा करकट यहाँ हो रहा है तो किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि वही करेगा, रोज वही करेगा, नहीं, आप इकट्ठे होइए, एक प्रण लीजिए कि यार इसे यहाँ से हटाना है, होता इसके उल्ट है, बल्कि और बढ़ा देते हैं जाके कि अरे उसने गिरा था, मैं भी वहीं पे जाके गिराऊंगा।
3: अब हमारे गांव मोरनी हिल है, हरियाणा का एक हिल स्टेशन है हमारा, लेकिन गांव के शुरुआत एंट्री पे ही कचरे के ढेर हैं, चारों तरफ गांव के कचरे के ढेर हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना, देखिए अब ये सुनने को मिल रहा है तो सोचिए क्या ये आपके जो गांव का सम्मान है उसे बढ़ाएगा? नहीं, कम करेगा। तो सभी गांव वासियों को, वहां जो रह रहे हैं लोग अगर सुन रहे हैं, एकजुट होइए, प्रशासन का सहयोग लीजिए, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा नहीं, तो एक प्रशासन का सहयोग लीजिए उनके साथ मिलकर, लेकिन आगे बढ़िए।
3: प्रशासन ये कर सकता है कि थोड़ा निदान के लिए ना, थोड़ा जैसे एक चबूतरा जैसा बना
2: देगा, कोई एक जगह बना दे, तय कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है ना, सहयोग का मतलब ही यही है कि आगे आपको बढ़ना है लेकिन सहयोग लेना है उनका, वो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं कि इसका निदान कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं जहां तहां पेड़ों के नीचे गड्ढे में नाली में नदी में फेंक दिया और उसके बाद भूल गए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ।
3: ठीक है सर, धन्यवाद।

0: ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ।
1: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
2: अरोड़ा प्लाईवुड
3: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
2: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
4: हेलो चंडीगढ़।
5: नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: मैं रणधीर सिंह, गांव जगूड़ी, जिला यमुनानगर से हरियाणा से बात कर रहा जी।
4: हाँ जी, हाँ जी, रणधीर सिंह जी, कैसे हैं आप?
5: ठीक हाँ सर जी, आप कैसे हैं जी?
4: बस बढ़िया जी, आपकी रेडियो की दीवानगी हमें मालूम है।
5: बहुत दीवानगी है जी, बहुत दीवानगी जी।
4: जी बस इसी तरह दीवाना बने रहिए।
5: की तो इतनी दीवानगी है जी, 11:30 से 12 तक कान इसके रेडियो को लगा के रखता हूं।
4: लगा के रखते हैं, चलिए यही प्यार बनाए रखिए।
5: मेरा नाम बोले है जी।
4: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही प्यार तो हमें देखिए।
5: मेरा नाम नहीं बोल रहा।
4: नहीं नहीं, आपका नाम देखिए, आज आप आ गए साक्षात, आप खुद बोल रहे हैं अपना नाम और आपका नाम भी बोला जाएगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, स्वच्छता भी उत्सव है।
5: स्वच्छता के ऊपर विषय है ना जी?
4: जी
5: ये जी, स्वच्छता तो इंसान का अपना धर्म है जी।
4: जी
5: इसको अच्छे से निभाना चाहिए सर जी।
4: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर सफाई नहीं है।
5: पशु पालता जी, उनको अच्छी तरह साफ सुथरे रखता हूँ जी, उनका पूरा ध्यान रखूँ जी।
4: बिल्कुल, अपने पशुओं को, अपना आसपास, खुद को,
5: घर आंगन को भी अच्छी तरह साफ रखता हूँ जी, गंदगी मुझे अच्छी लगती।
4: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी और दूसरों को भी जागरूक करिए।
5: सिंगल पोलोथीन है जी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया जी, इसका निदान करना चाहिए सरकार ने कुछ जी।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपकी
5: ये तो
4: अपील।
5: देखा नहीं जंदा जी, आंखें बस बंद करने में फायदा जी, देखा जी।
4: चलिए आपकी बात सुन रहे होंगे कोई अधिकारी तो वो भी, और लोग भी सुन रहे हों तो इस बात को अमल में लाएं और स्वच्छता पे ध्यान दें।
5: धन्यवाद जी, मेरी कॉल
4: बहुत बहुत शुक्रिया
5: अटेंड करी जी।
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी दीवानगी इसी तरह बनी रहे, हम हमारे साथ जुड़े रहिए।
5: धन्यवाद सर जी।
4: धन्यवाद धन्यवाद।

0: तारे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। अगले श्रोता लाइन पे हैं, बात कर लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो सर, संगीता डोगरा बोल रही, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। जी बताइए, आज का जो विषय है स्वच्छता भी उत्सव है, इसे मन से मनाएं, क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल सर, मैं कहूंगी कि आज का दिन जैसे कोई फादर्स डे चुनते हैं, मदर्स डे चुनते हैं, टीचर्स डे है, तो ये याद दिलाने के लिए, दिमागों में दोबारा डालने के लिए कि ये भी स्पेशल, किसी को स्पेशल बनाना बर्थडे है जैसे, है ना सर, तो क्लीनलीनेस डे जो वर्ल्ड क्लीनलीनेस डे है, ये चुना होगा, ये कुछ सोच के ही चुना होगा सर।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले हम विचारों की स्वच्छता लाएं,
0: हाँ,
1: विचारों को अपने,
0: बिल्कुल ये भी एक स्वच्छता है, बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए कितनी अच्छी बात कही आपने।
1: तो हम कर्म भी अच्छा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा। छोटी सी बात लेकिन इतनी बड़ी बात है ये, गहराई में अगर जाएं कि अपने विचारों की स्वच्छता कीजिए।
1: बिल्कुल, हमारा धान जी धर्म, जैसे दिवाली में आएगी ना, सारे दिवाली आ रही, दिवाली माँ लक्ष्मी बुलानी है
0: जी,
1: क्या आपको सारा साल नहीं चाहिए?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए ना सफाई तो हमेशा रखनी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर
0: जी।
2: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
2: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।

लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में अब ये गीत।

0: பெருமான்.
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
3: हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
3: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
4: असलम जी, आपको सलाम।
3: जी सलाम है जी।
4: मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आज के विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता को लेकर क्या इसे उत्सव की तरह मना लें या बस वही दकियन उसी बातों पे ही रहें कि नहीं यार मैं क्यों करूँ, छोड़ो कोई और कर लेगा?
4: नहीं नहीं, उत्सव देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नहाते हैं।
3: बिल्कुल,
4: शरीर को स्वच्छ करना ही करने के लिए ही करते हैं ना।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
4: हमारा शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। और स्वच्छता दो टाइप की होती है, एक तो अपने घर की है, एक बाहर वाले अपने स्ट्रीट कह लीजिए जहाँ लॉन वगैरह बाहर होता है। तो घर की स्वच्छता के लिए भी हमें सब कमरों, हम ड्राइंग रूम को सबसे ज्यादा सजा के रखते हैं।
3: सही है,
4: चाहे वहाँ एक आदमी भी ना आए दिन में।
3: हाँ, और पीछे का कोना कहीं कोने में इतना कबाड़ भरा हुआ है, उसको सोचते हैं कि किसी एक दिन आएगी दिवाली या कोई त्योहार तो देखेंगे। तब तो तक वो इतना
4: चाहता था बाकी कमरों को भी कम से कम ड्राइंग रूम की तरह नहीं थी, लेकिन अपना कमरा समझ के तो ठीक रखें।
3: बिल्कुल, देखिए कितनी जहीन बात की आपने।
4: हाँ। दी जाए जितने हम ड्राइंग रूम को देते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए और सब में बराबरी हमारे विचारों में ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको अपना ही मकान है। बिल्कुल सही, देखिए ना कहाँ से आपने बात ली। और बिल्कुल सही बात है कि एक कमरा को हम सजाए बैठे हैं रोज के लिए, लेकिन कोई कहीं वहाँ धूल जम रही है, उस पे कपड़ा भी नहीं लगा है ना, बाहर खड़ी गाड़ी की इस्तेमाल नहीं हो रही है, सालों साल खड़ी है, अरे यार साफ कर लो, आप ही की तो है ना।
4: तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है मकानों में बाहर स्ट्रीट पे, वहाँ बहुत ज्यादा गंद रहता है।
3: जी बिल्कुल सही,
4: आस पास वालों को भी सफर करना पड़ता है,
3: सफर करना पड़ता है, धूल मिट्टी है ना,
4: सड़क पे कभी रेत चली जाती है, कभी बजरी चली जाती है, कभी कुछ होता है, उससे एक्सीडेंट होने के भी खतरे रहते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल रहता है। और
4: मेरी ये उम्मीद है कि अपना सामान अच्छी तरह संभाल के उसको प्रॉपर स्टोर करके रखें, ताकि सड़क वालों को, गुजरने वालों को प्रॉब्लम ना आए।
3: हाँ बिल्कुल सही,
4: सड़क पे भी थोड़ी बहुत स्वच्छता रहे।
3: बिल्कुल रहे, और लोगों को आने जाने में आसानी भी रहे, किसी दूसरे का दुख का कारण हमें नहीं बनना है। सिंपल है ना जी। बहुत अच्छा लगा आप जी, आपके विचारों को जानकर, और हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, कुछ हिदायत लें, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो अमल में लाना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
4: करने की कोशिश तो करें ना,
3: कोशिश करें, बिल्कुल पहल हो जाएगी तो चीजें आसान हो जाती
4: आसान हो जाती
3: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
4: थैंक यू, नमस्कार
3: जी।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे मैं एडमिशन लेने से पहले बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। एक चौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, वहाँ पर बधाई का भी है, भीख मांगने का भी है जैसे ट्रेन में मांगते हैं सब, और एक रास्ता था जो बहुत सुंदर था, जो प्रगतिशील था, वो था एजुकेशन का। तो मैंने सोचा कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, ताली बजवाऊंगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। दोस्तों आज 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम है ये, और इसमें आप हमें कॉल्स करते हैं, आप अपने बातें हमसे साझा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके हम इसमें गीत भी चलाते हैं जिसमें आज हम ले रहे हैं 5 फिल्में। जी हाँ, इन 5 फिल्मों से आप हमें गीत बता सकते हैं। ये फिल्में नोट कर लीजिए, मेरी जंग, मुगले आजम, क्रांति, अमर अकबर एंथोनी, हम आपके हैं कौन। फिल्में एक बार फिर से सुन लीजिए, मेरी जंग, मुगले आजम, क्रांति, अमर अकबर एंथोनी, हम आपके हैं कौन। तो आज 11:30 पर हेलो सिटी ब्यूटीफुल में हमें आपका रहेगा इंतजार। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं ये कॉल। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: हाँ नमस्कार सर, मैं एमके सिंगल बोल रहा हूँ सेक्टर 20 पंचकुला से।
2: हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे?
3: सर जैसे फेस्टिवल टाइम चल रहा है और आपका सब्जेक्ट भी बड़ा अच्छा लिया आपने कि भाई अभी फेस्टिवल टाइम भी है, स्वच्छता की अपने आप में इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है सर, है ना,
2: वो भी एक उत्सव है।
3: यस सर जी। हमें सर हमारे सेक्टर 20 में क्या हुआ कि जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि घर में फूड वेस्ट हो जाता है थोड़ा सा, ना रोटी बच गई या कोई और फूड वेस्ट बच गया, जनरली लोगों की फेथ होती है कि इसको डस्टबिन में ना रखा जाए, और उसको क्या करते हैं जनरली कि लोग पेड़ के नीचे या इधर उधर कहीं डाल देते हैं कि भाई नहीं आएगी वो खा लेगी इसको ना, तो वो क्या है कि प्रैक्टिकली वो हो नहीं पाता, न तो गाय आती और वो 3-4 दिन तक खड़ता रहता है या कुत्ते उत्ते उसको खराब करते रहते हैं, और अननेसेसरीली हर चौराहे पे हर जगह इधर उधर ये चीजें मंदिर के बाहर कहीं कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें मिल जाती है। अभी जैसे फेस्टिवल आने वाले हैं तो लोग खाना बच जाता है उधर डाल देते हैं, फिर इसको थोड़ा गाय खा ली कोई पशु खा लेगा, लेकिन वो बेसिकली रखता उनका फेथ अपनी जगह ठीक है लेकिन वो अल्टीमेटली वो गंदगी का कारण बनती है।
2: या तो आप ये हो सकता है वो जगह चिन्हित कर ले जहाँ पर आपको पता है कि ये होता ही है।
3: सर वो दैट्स राइट सर, उसी में सर हमारे लास्ट ईयर हमारे एक कुछ वॉलंटियर्स इकट्ठे हुए और एक मिस्टर रामलाल गोयल जी थोड़ा सा उन्होंने इनिशिएटिव लिया और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ लिया, तो हमने क्या करा कि हर लगभग जैसे सेक्टर 20 में लगभग मोर देन 100 सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी, तो हर सोसाइटी वालों से रिक्वेस्ट करा और अल्टीमेटली वो सब एग्री करके और सभी की जो सोसाइटी में एक एक बकेट रखवा दी, और वो क्या करते हैं कि अपना जो फूड वेस्ट है उसमें इकट्ठा डाल देते हैं और फिर वॉलंटियरली एक कुछ कलेक्शन भी कर लेते हैं लोग, उसमें वो सारा डेली के डेली वो एक आदमी की ड्यूटी लगाती है वो सारा ले जाके और गौशाला में उसको।
2: क्या बात है, देखिए ना कितना अच्छा, और आपने एक इनिशिएटिव लिया किसी ने और ये सब चीजें आसान हो गई और हो भी गया, है ना, तो ऐसा ही

0: चाहिए और ऐसा ही होना भी चाहिए, उत्सव की तरह सब मिलकर मनाए।
1: सेक्टर 20 में अभी इस समय इतना बड़ा सेक्टर है, उसमें कहीं पे भी आपको ऑलमोस्ट 10% 90% हमें सक्सेस मॉल 100%
0: बहुत अच्छी बात। और हमारे जो श्रोता बाकी सुन रहे होंगे एक आइडिया ले सकते हैं इन सब चीजों से कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है।
1: छोटा सा और एक और छोटा सा प्रैक्टिकल,
0: समय की थोड़ी समय की सीमा है तो आज नहीं, फिर किसी उसमें हम आपसे जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 16वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज आप सुनेंगे इसकी दूसरी कड़ी
4: जिंदगी नामा, जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
3: दोस्तों, जिंदगी नामा प्रोग्राम में आज हम एक बार फिर उस शख्सियत की जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाने में बहुत संघर्ष किया और ये संघर्ष आज तक जारी है। हमारे समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, क्योंकि शायद हमारे समाज ने, हमने इनके और इनके जैसे दूसरे जो लोग हैं उनके बारे में कभी सोचा नहीं। घर में शादी ब्याह हो, बच्चा हो, तो हम सोचते हैं कि इनकी दुआएं मिलें, इनका आशीर्वाद मिले तो हमारे सब काम सफल हो जाएंगे। हमारे समाज का हिस्सा है नर नारी और हमारे समाज में ही तीसरी प्रकृति भी है, वो है ट्रांसजेंडर। जी हाँ, आज एक बार फिर जिंदगी नामा प्रोग्राम में हम बातें करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से PhD कर रहे रिसर्च स्कॉलर फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान से। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
5: आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: धनंजय, इससे पहले कि हम आपके संघर्ष की कहानी को आगे बढ़ाएं, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के अंश जो पिछले प्रोग्राम में आपने हमारे साथ की थी वो हम अपने उन श्रोताओं को सुनवा दें जो किसी वजह से हमारा पिछला जिंदगी नामा प्रोग्राम नहीं सुन पाए।
5: हाँ जी,
3: तो आइए सुनते हैं पिछले जिंदगी नामा प्रोग्राम में हुई बातों के कुछ अंश।
5: देखिए, मेरा जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में देवप्रयाग, जो एक पहला प्रयाग है 5 प्रयाग में, वहाँ उसके पास ही गांव है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। 6-7 साल की उम्र में जब मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे लगता है कि मैं गलत शरीर में पैदा हो गई और मैं लड़की हूँ, तो मेरी माँ ने मेरे पापा को बताया और मेरे पापा ने फिर पंडित से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है, कोई चुड़ैल, और फिर वो ओझा के पास लेके गए तो ओझा ने गर्म चिमटा करके मेरे शरीर में दाग, अभी भी वो निशान है मेरे शरीर में, और वो दागने शुरू किया कि हम इस बच्चे को छोड़ दें।
3: तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में पढ़कर अपने ही बच्चों के ऊपर इस तरह के जुल्म करवा लेते हैं।
5: मेरे शरीर पर बहुत सारे जख्म हो गए थे तो उस टाइम पे मैंने मान लिया कि ठीक है, मैं वो हरकत नहीं करूँगी, मैं अपने आप को लड़की नहीं मानूंगी, मैं लड़का हूँ। तो उस टाइम पे तो मैंने संभाल लिया कि नहीं, क्योंकि वो 3rd degree टॉर्चर था। जो 10-12 साल के एज से पहले हमारे साथ, मेरे साथ जो है वो अब्यूज होता है, सेक्सुअल अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब आप भगा नहीं देते हैं कहीं से भी, लेकिन उस शरीर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आज लोगों को पता है बैड टच और गुड टच, हमारे टाइम पे नहीं पता था और हमारे पेरेंट्स मानते नहीं थे इन चीज़ों, क्योंकि ऐसे झूठ बोल रहे हैं। हमारे पड़ोस में कई ऐसे लोग थे जो हमारे शरीर को टच करते थे। बारह 13 साल की एज में जब शरीर बदलने लगा तो शरीर बदलने के साथ साथ लड़के हंसते थे तो लड़की जैसा और लड़के जैसा, मतलब ये कॉम्बिनेशन छक्का है तू, तो ये सब चीजें

0: प्रॉब्लम करने लगी, उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। 93 में मेरा एमए एडमिशन हुआ, एमए में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में,
1: पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में
0: जी। तो मेरे को फिर लड़कों ने रैगिंग किया मेरे साथ, सेक्सुअल अब्यूज किया मुझे पकड़ के डिपार्टमेंट के बैक साइड पे। तब 93 में उस टाइम पे कैंटीन्स नहीं होती थी, तो वहाँ पर जंगल होता था। किसी तरह मैं वहाँ से भागी और फिर मैं दोबारा डिपार्टमेंट में नहीं आई, क्योंकि काफ़ी सारे रसूखदार लोग थे और अगर मैं वहाँ दोबारा जाती तो मेरे साथ रैगिंग दोबारा हो सकती थी।
1: तो ये जो आपके साथ हुआ, इस वजह से उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी वहाँ से।
0: 93 में मैंने एमए छोड़ दिया, लेकिन 94 में अगेन मैंने एक लॉ में एडमिशन लिया, एलएलबी में लॉ इवनिंग का। तो दिन में मैं जॉब करने लगी और शाम को पढ़ाई करने, करीबन एक डेढ़ महीना हो गया। उसके बाद कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे फिर से रात को 9 बजे करीब, जब 9:15 बजे मेरी क्लास खत्म हुई, उस टाइम एक लड़का आया मेरे पास और कहते तुम्हें कोई बुला रहा है। तो मुझे कमरे में लेके गए क्लासरूम में, तो लड़के ने मुझे अंदर धक्का मार के कमरे का जो कुंडी है वो बंद कर दी। वहां पर 10-12 लड़के बैठे थे, उन लड़कों ने मेरे साथ फिर वही सेम जैसे 93 में हुआ था रैगिंग किया, मुझे नाचने को बोला, मुझे गाने

0: कोने। मुझे फिर से रात को 9 बजे करीब, जब 9:15 बजे मेरी क्लास खत्म हुई, उस टाइम एक लड़का आया मेरे पास और कहते तुम्हें कोई बुला रहा है। तो मुझे कमरे में लेके गए क्लासरूम में, तो लड़के ने मुझे अंदर धक्का मार के कमरे का जो कुंडी है वो बंद कर दी। वहां पर 10-12 लड़के बैठे थे, उन लड़कों ने मेरे साथ फिर वही सेम जैसे 93 में हुआ था, रैगिंग किया, मुझे नाचने को बोला, मुझे गाने को बोला, ये सब चीजें।
1: तो आपने किसी से शिकायत नहीं की, रैगिंग आपके साथ हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था, तो आपने किसी को शिकायत नहीं की कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है?
0: हाँ जी, मैं डरती बहुत थी कि शायद सब दुनिया को पता लग जाए कि ये हिजड़ा है, क्योंकि माँ बाप की इज्जत का सवाल भी था और फिर मुझे हिजड़ा लोग ले जाते, ये भी डर क्रिएट किया गया था कि अगर घर से निकाल देंगे फिर मेरे पास कोई और आसरा नहीं था रहने को, फिर या तो हिजड़ों में चले जाओ। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी, तो मैंने उनके पांव पकड़ के भीख मांगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे पढ़ना है। लेकिन उन लड़कों ने मुझे वो सब करने को बोला जो मैं यहाँ पर नहीं बयान कर सकती हूँ।
1: धनंजय, ये तो थी वो बातें जो आपने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ की, उनके कुछ अंश हमने अपने श्रोताओं को सुनवाए। आपने इतने संघर्ष के बाद अपनी पहचान अब बना ली है, तो आप अब अपनी कम्युनिटी यानी किन्नर कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हैं?
0: मेरा पढ़ाई का बहुत कम समय मुझे मिलता है, मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो गया है, लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं और मुझे इतना अपने हर प्रोग्राम में मुझे सम्मान के साथ बुलाते हैं, हर यूनिवर्सिटी के मोस्टली जो नॉर्थ है, जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उधर वेस्ट बंगाल, पूरे मतलब इस नॉर्थ इंडिया में तकरीबन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज मुझे बुला रही है सेमिनार में, मुझे स्पीच देने के लिए, टॉक के लिए। तो क्योंकि हर एक इंसान की अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में मैं कोशिश करती हूँ कि थर्ड जेंडर है वो ऐड हो जाए, जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें थर्ड जेंडर जो है चैप्टर ऐड हो। तो सरकार के साथ, समाज के साथ और परिवारों के साथ मिल के मैं एक अवेयरनेस एक कंपेन कर रही हूँ, किन्नरों को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसके बाद मेरा सिर्फ अपने लिए एडमिशन के लिए दरवाजा नहीं खोलना था, बाकी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग और भी थे जो पढ़ना चाहते हैं, जो दबे हुए थे, जो कुचले हुए थे, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, उनको मैं एक मोटिवेशंस का काम कर रही हूँ कि आप आइए बाहर अपनी आइडेंटिटी के साथ आइए और अपनी आइडेंटिटी के साथ पढ़िए, ताकि समाज में एक रूपता, एक एकजुटता आए और जो तृतीय प्रकृति जो थर्ड जेंडर है वो बीच में, जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं या इस बिल्डिंग में बैठे हैं, जमीन को छत के साथ जोड़ने वाली दीवारें हैं और दीवार को हटा दोगे तो ये छत नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरह जो किन्नर हैं वो नर और नारी के बीच में जोड़ने का काम करते हैं, समानता का वो हम एहसास में कोशिश करते हैं कि दुनिया के दिमाग में वो फिट बैठ जाए कि आप नर और नारी तृतीय प्रकृति के बिना अधूरी हैं। तो आज पंजाब यूनिवर्सिटी के मैंने काफी सारे लंबा संघर्ष किया वहाँ पर फीस माफी के लिए, अब हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं है और एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना हुआ है वहाँ पर, सेपरेट वॉशरूम बना हुआ है, एंड सेकेंडली अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें हॉस्टल भी मिल जाए, ताकि जो बच्चे घर से निकल गए हैं या डेरों में रह रहे हैं, वो डेरे से निकलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सहारा, एक तो छत होना चाहिए और फीस नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं संघर्ष कर रही हूँ कि समाज के साथ या जो प्रशासन है भारत सरकार के साथ मिल के हम लोग, क्योंकि मैं गांधीगिरी में ज़्यादा विश्वास करती हूँ, प्रोटेस्ट करने से अच्छा है हम लोग लोगों को समझाएं हमें क्यों ज़रूरत है, ये सब फीस माफी की जरूरत क्यों है, हमें हॉस्टल की जरूरत क्यों है, हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है। तो जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो सबके लिए बराबर हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी ह्यूमन राइट्स सभी के लिए बराबर हैं। और मैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम नहीं करती, मैं ऑल बींग्स के लिए काम करती हूँ, इसमें सिर्फ इंसान नहीं है, प्रकृति के हर जीव आते हैं, हमें हर चीज के लिए काम करना चाहिए। आज हमारे पर मुसीबत आ गई है पर्यावरण की, जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो आज इंसान सोचने लगा कि हमें बचाना धरती को, तो हमें क्यों ना सभी को बचाएं, सिर्फ इंसान को नहीं। आज मुसीबत हमारे ऊपर आ गई तो हम प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ प्रकृति के हर जीव को बचाना है, इस धरती को बचाना, तो हमें सबको साथ में रह के काम करना होगा।
1: जी धनंजय जी, आप स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी हुई हैं
0: जी,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस प्रकार से आप इस अभियान के साथ जुड़ी और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए।
0: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि स्वच्छता एक जो है वो रहनी जरूरी है। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने सोचा कि इसमें भाग लेना जरूरी है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री झाड़ू सड़क पे लगा सकते हैं तो हम क्यों ना लगाएं। हम किन्नरों ने सोचा कि हम भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो पिछले साल जनवरी में हम लोगों ने चंडीगढ़

0: पंचकुला में स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े और जो बाहर शौच करते थे, सुबह 4 बजे हम चले जाते थे और सुबह 4 बजे जब लोग शौच करने बाहर जाते थे तो हम वहीं पर पहुंच जाते थे उनके, जहां वो विस्टा करते थे, तो हम वहां पर उनको फूल देते थे, उनके स्वागत, उनके गले में माला देते थे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है इस देश में, इतने बड़े स्तर पे स्वच्छता का अभियान चल रहा है, आपके घर में टॉयलेट है, अगर टॉयलेट नहीं है तो सरकार मदद भी कर रही है टॉयलेट बनाने की और आप फिर भी नहीं बना रहे, और है भी तब भी आप लोग बाहर जाते हैं शौच करने, उससे कितना पोल्यूशन होता है, आप दुनिया को छोड़िए आप खुद उस प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, अगर आपके घर के आसपास जो मक्खियां हैं आपके घर पे आएंगे, आप बीमार हो गए, उससे कितने हजारों रुपए की दवाइयां आप खरीदोगे। तब से हम स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हैं, आज भी अगर सरकार के साथ नहीं जुड़कर भी तब भी हम पर्सनल लेवल पे कहीं भी हमें कोई इंसान दीर्घ शंका या लघु शंका पेशाब करना या टॉयलेट करते दिखाई देते हैं तो मैं उसको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि, तो लोग परेशान हो जाते हैं ये लोग क्यों हमें डिस्टर्ब करें, तो हम डिस्टर्ब करने नहीं आए, हम लोग लोगों को जागरूक करने आए, सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी को हम लोग नहीं अवेयर करते, हम सब चीजों को, भारत को विश्व स्तर में एक स्वच्छ जो भारत है उसका हम लोग सपना है, चाहे वो प्रधानमंत्री का है लेकिन हमारा भी वही सपना है, हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत रहे और स्वच्छता के साथ जिए और दिल दिमाग के साथ साथ सारा हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे।
1: अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है?
0: बिल्कुल करना पड़ता है, रोज हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम करनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने रोका था मुझे, तो उन्होंने रोक के मुझे कहा कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए, तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। अब लाइसेंस तो बनते हैं, अभी बनने शुरू हो गए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती कि हमारे जो नेम जेंडर ये सब पुराने हैं और जो हमारे आधार कार्ड है वोटर कार्ड है वो अलग हैं, वो अलग नाम से हैं, तो मैच नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा मेरा लाइसेंस नहीं है, तो उन्होंने कहा अपनी गाड़ी के कागज दिखाओ, तो मैंने कहा वो भी मेरे नाम पे नहीं है, वो गाड़ी के कागज नहीं लेके आए, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अपने हेलमेट तो पहनना चाहिए था, तो मैंने कहा हेलमेट कहते जैसे फीमेल ने पहना है आप भी पहनो, मैंने कहा मैं फीमेल नहीं हूँ, तो वो चुप हो गए। इस तरह की जो प्रॉब्लम है रोजमर्रा की, जैसे खाने का प्रॉब्लम है, रहने की छत नहीं हमारे पास, कोई कमरे किराए पे नहीं देता है, और ये हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसीज हैं, हमारे लिए LIC या इस तरह की पॉलिसीज नहीं होती हैं जिसमें हमारा जेंडर का रिकंस्ट्रक्शन होना वो पॉलिसी में कवरेज नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हेल्थ की है। एजुकेशन राइट्स तो हैं लेकिन एजुकेशन राइट्स इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है, सरकार कहती है आपके पास पूरे राइट्स हैं आप एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन वहां पर माहौल तो होना चाहिए पढ़ने का। अगर मैं आपके स्टूडियो में आई हूं, यहां पर मुझे बाहर देख के हंसने लग जाएंगे सब लोग या सब लोग मखौल करते हैं मजाक बनाने लगे, तो मैं इंटरव्यू भी ढंग से नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसी तरह की प्रॉब्लम बाकी जगहों पे हैं। तो राइट्स देने के साथ साथ हमें वहाँ पर एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हरियाणा में अभी जॉब्स निकाली हैं पटवारी की या तहसीलदार, इस तरह की बहुत सारी सरकारी जॉब निकाली हैं, तो मैं चाहूंगी कि सरकार वहाँ पर थर्ड जेंडर कॉलम भी डाले, अगर नहीं डालती है तो हमें फिर बार बार कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है कि कोर्ट डायरेक्ट करता है कि यहाँ जब तीसरा जेंडर है तो हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अपने हर एक फॉर्म में थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बैंक भी हमें लोन नहीं देते हैं, अगर मुझे घर बनाना है या मुझे अपना बिजनेस चलाना है तो बैंक भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उसमें सैलरी सर्टिफिकेट मांगते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न मांगते हैं, ये तो हमारे पास है भी नहीं, हम लोग कहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे या हम लोग कहाँ से सैलरी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, तो हमें लोन नहीं देता और फिर ऊपर से डर जाते हैं लोग बैंक वाले कि पता नहीं वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हमें हर जगह पे एग्जेम्पशन होना चाहिए, थोड़ा सहूलत होनी चाहिए, इक्वालिटी के साथ इक्विटी भी होनी चाहिए। आप हमें सारे राइट्स तो दे रहे हैं लेकिन हमें फिर भी लाइन के सबसे पीछे बिठा रहे हो। अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें हम लोगों ने पहली बार वोट डाले हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो 2014 में जब 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है उसके बाद एकदम से इलेक्शन हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने थर्ड जेंडर कॉलम ऐड नहीं किया था उस टाइम पे 2014 में, तो इस बारी 2019 में जो आम इलेक्शन हुए हैं उसमें हम लोगों ने पहली बार वोट का इस्तेमाल किया है, और मैंने तीनों जो हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बैठ के बैठक हुई हमारी, हमने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें हर इंसान को जोड़ना है जो भारत का नागरिक है, जो वोटर कार्ड है वो भी बनवाने हैं, तो मैंने काफी लोगों को वोटर कार्ड बनवाए हैं, फिर भी वोटिंग कम पड़ी है क्योंकि अभी मैंने जब मैं वोट डालने जा रही थी तो तीसरी लाइन नहीं थी। अब मैं पढ़ी लिखी PhD कर रही हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए जागरूक हूँ, मैं वहाँ आवाज़ उठा सकती हूँ, लेकिन एक अनपढ़ इंसान, एक गरीब इंसान, एक गरीब ट्रांसजेंडर कैसे आवाज़ उठाए। मैं वोट डालने गई तो वहाँ देखा मेल और फीमेल की लंबी लाइन लगी थी, मैं लंबी लाइन से नहीं डरी, मैं इसलिए हैरान हुई थी कि वहाँ पर

0: तीसरी लाइन का कोई प्रोविजन नहीं था। मैं तीसरी लाइन में खड़ी हुई लेकिन मुझे वहां से भगा दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं आप मेल वाले में खड़े हो जाओ या फीमेल वाले में खड़े हो जाओ। मैं कहा मेरी तो दोनों में पहचान नहीं है, मेरे पास ये वोटर कार्ड है इसमें लिखा है ट्रांसजेंडर। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं, आप किसी भी लाइन में खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं, जब इसमें थर्ड जेंडर लिखा हो तो थर्ड लाइन भी लगनी चाहिए। मैंने कहा अगर आप मेरे को वोट नहीं डालने दोगे अपनी पहचान के साथ तो मैं फिर मीडिया बुला लूंगी और मीडिया को बताऊंगी कि आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो ये सब चीजें, फिर वहाँ का जो ऑफिसर था वो आया, उसने तीसरी लाइन लगवाई और फिर मेरा वोट डला। तो ये जो पढ़े लिखे होने का एक फायदा है, इसीलिए मैं अपनी कम्युनिटी को बार बार ये बोलूंगी आप पढ़िए, आप पढ़ के आगे बढ़ोगे तो आप अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा जागरूक होंगे।
1: धनंजय, हमने सुना है कि आप गाते बहुत अच्छा है, हमारे श्रोताओं को कुछ सुनाइए।
0: मेरे को काफी साल हो गए छोड़े हुए, क्लासिकल मैंने सीखा था तो, लेकिन 30 साल हो गए तकरीबन मुझे वो छोड़े हुए। लेकिन संगीत तो मेरे रूह में है, मेरे रगों में है, संगीत से मैं प्यार करती हूँ क्योंकि संगीत है तो प्रकृति है। तो एक राग कलावती में ही है, फिल्मी गाना है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, उनके जैसे तो मैं गा नहीं सकती लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत गा सकूँ।

0: धनंजय जी, आपने बहुत खूब गाया। जिस तरह से आपने बताया कि आपने शास्त्रीय गायन सीखा, तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या आपको गाने का शौक था, या फिर आप गाने को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे?
1: जो तीसरी प्रकृति के लोग हैं, जब हम लोग पुराण पढ़ते हैं तो भगवान शिव के दरबार में सबसे पहले किन्नर बैठते हैं, किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग, तो तीनों ही साम वेद को पढ़ते हैं। साम वेद संगीत का ग्रंथ है, और जिसमें ध्रुपद, धमार जो गायकी है जो अब लुप्त होने वाली है, तो वो लोग ऐसी कठिन विद्या को गाते थे, ध्रुपद को गाते थे। आज ख्याल गायकी करते हैं, ख्याल भी खत्म हो रहा है, लेकिन जो ध्रुपद है वो और भी कठिन है, जिसमें मृदंग में जो नोम तोम के बोल होते थे, जिसमें सारी प्रकृति को पूरा मैथमेटिक्स चलता है, उसमें जो गणित है वो ध्रुपद में चलता है। लेकिन जब किन्नर लोगों का अगर हम बात करें कि वो संगीत या नृत्य से क्यों जुड़े हैं, शायद प्रकृति ने उन लोगों को इसके साथ सजा कर भेजा है। हम लोग हमेशा से ही संगीत को प्यार करने वाले लोग हैं। और एक देश है कंबोडिया, कंबोडिया का जो खमेरियन सिविलाइजेशन थी, जिसमें अंकोरवाट टेंपल के बारे में आप पढ़ते हो, आज वो नष्ट हो रहा है, तो विश्व विरासत है। वो जो खमेरियन सिविलाइजेशन थी, उनका जो फ्लैग होता था उसमें किन्नर की फोटो होती थी, क्योंकि वहां पर उस किन्नर को दक्ष कन्या के रूप में माना जाता था कि ये परफेक्ट वुमेन है, इसके अंदर दोनों गुण है प्रकृति के, नर और नारी के, तो ये फूल भी दे सकती है और एक बड़ा सा बड़ा पहाड़ जैसा भी तोड़ सकते हैं। तो हमारे अंदर वो गुण है, हम पुरुष को भी समझते हैं, औरत को भी समझते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा धनंजय। आप हमें ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं, तो कभी आपकी कम्युनिटी के लोग जो हैं, कभी उनका विरोध का सामना भी करना पड़ा?
1: बिल्कुल क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने एडमिशन लिया था तो मुझे बहुत सारे ट्रांसजेंडर ने फोन करके पूछा कि धनंजय तुम क्यों पढ़ रहे हो, और हमारी जो अपनी रियल आइडेंटिटी है उसके साथ क्यों पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ना तो लड़का बन के पढ़ लो और साड़ी पहन के मत जाना, क्योंकि उससे हमारी जो परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो भीख मांगने की या जो बधाई मांगने की जो परंपराएं, उसको ठेस पहुंचेगी, लोग ये सोचने लग जाएंगे आप तो ये पढ़ने लगे हैं और ये आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इनको इक्वल राइट्स मिल गए, तो बधाई या भीख देना लोग कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो मैंने कहा देखो, मेरे पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे पढ़ने से आपका सम्मान ही बढ़ेगा।

0: परंपराएं आपकी बंद नहीं होंगी, लेकिन जो परंपराएं वो शुद्ध रहनी चाहिए। दुआ जो परंपरा वो हमेशा रहेगी, लेकिन उस परंपरा को बिजनेस ना बनाया जाए, उस परंपरा को हम धंधा ना बनाएं, ताकि लोगों के जैसे हम दान करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। सभी ट्रांसजेंडर भीख क्यों मांगे? जो पढ़े लिखे हैं वो जॉब करें, आईएएस ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन जो लोग उस बधाई परंपरा में रहना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन वहां पर भी धंधा ना हो, उसका बिजनेस ना बने। तो ये मेरी लड़ाई थी, उसका विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि इसके साथ सारी समाज है, सारी सोसाइटी है, सरकार है, पुलिस प्रशासन है, सब लोगों को। लेकिन आज खतरा तो है, मुझे भी खतरा अभी भी है, ऐसा नहीं कि खतरा नहीं है, लेकिन
1: किस तरह का खतरा है आपको आप महसूस करते हैं?
0: देखिए, किसी को अगर किसी का बिजनेस को ठेस लगती है, किसी को धंधे को, तो वो उस इंसान को ही उड़ा देते हैं। तो मैं उस खतरे में जी रही हूँ, लेकिन मेरा एक रास्ता साफ है, सच्चा है कि नहीं, हमें सम्मान की जिंदगी जीनी है। मेरा एक सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर बोलूं और भारत को रिप्रेजेंट करूं, ताकि जो हमारे यहाँ जो बाइनरी है, मेल फीमेल, जो माना जाता है कि यही रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिविटी करते हैं, यही सृजन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं, तो बनाने के साथ साथ पालन करने वाला कहाँ गया? तो पालन करने वाले को भी साथ में रखना होगा। तो वो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, और भारत सरकार से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल पास करें, हमारे लिए कानून बने, हम लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएं और हम लोग साथ में चलें। और सबसे बड़ी मैं सारी दुनिया से, सारे समाज से मांग करती हूँ कि हमें स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। अभी लोग हमें कमरा किराए पे नहीं देते हैं, लोग हमें निकाल देते हैं, हमें कमरा किराए पे लेने के लिए भटकना पड़ता है, लोग डर जाते हैं कि ये हमारे कमरे में, घर में रहने आएंगे तो बददुआएं लगेंगी, लेकिन जब उनको बददुआएं देनी होती हैं, अपने ऊपर से निकालनी, फिर हमें ढूंढते हैं, डेरों में ढूंढते हैं, बुधवार को, मंगलवार को ढूंढते हैं। पहले तो आप घर से निकाल देते हो, फिर आप लोग हमें ढूंढते हो कि हमारी बददुआएं भी ले लो। मैं सोचती हूँ कि हमें कहीं ना कहीं तो जीने दो, हमें आपने घर से निकाल दिया, फिर बददुआएं भी दे रहे हो, ये सब चीजें नहीं होती हैं। मैं सिर्फ समाज में ये लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वासों में नहीं जीना चाहिए, हम लोग आपके जैसे लोग हैं, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, हमें घर में रखिए, अपने माँ बाप के साथ रखिए, हम अपने भाई बहनों के साथ रहना चाहते, समाज के साथ हर कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं, बस इतना ही चाहिए हमें और कुछ नहीं।
1: धनंजय जी, आपने अवेयरनेस की बात की, आप अवेयरनेस प्रोग्राम कोई चला रही हैं
0: जी,
1: तो किस तरह से आप लोगों को अवेयर करती हैं?
0: अभी जैसे जम्मू कश्मीर, जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे तमाम यूनिवर्सिटीज मुझे इनवाइट कर रही हैं टॉक के लिए, क्योंकि लोगों को अभी बेसिक्स नहीं पता है कि ट्रांसजेंडर होते कौन है, ये लोग हैं कौन, ये सब इतनी जो अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ एक जैसे नासूर के साथ तरह जुड़े हुए हैं, हमें इनका सबसे पहला ट्रीटमेंट करना है, हमें जो मेंटालिटी है, जो सोच है, उसको बदलना है कि हम लोग आपके जैसे ही हैं, हम उसी कोख से पैदा हुए, हम कहीं एलियंस नहीं है, हम लोग किसी दुनिया से नहीं आए, सिर्फ मैटर इतना है कि हम अलग हैं। इफ आई एम डिफरेंट, दैट डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, इस प्रकृति का हम इंसान, देखिए 6 अरब लोग हैं दुनिया में, तो 6 अरब लोगों की शक्लें अलग अलग हैं, सब लोग डिफरेंट है, हमारी हाथ के जो रेखाएं हैं दोनों, वो भी अलग हैं, एक दूसरी रेखाओं से नहीं मिलते हैं। तो इंसान इंसान की जेंडर आइडेंटिटी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्यों एक जैसी रहेगी, वो भी अलग है। प्रकृति ने हर चीज के लिए स्पेस दिया। मेरे साथ, मैं भी उत्तराखंड से आई हूँ, तो मैं पहाड़ों में अकेली बैठी सोच रही थी, एक झरना बह रहा था वहां पर, उसमें एक लिजर्ट, बड़ी छिपकली और सांप, ये सब पानी पीने आते चले जाते थे। मैं सोच रही थी कि प्रकृति इन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, प्रकृति ने सबके लिए स्पेस दिया है, हमारे लिए भी, और मानव ने सोचा ये प्रकृति का दोहन, इसको यूज करना सिर्फ आदमी का, एक इंसान कर सकता, नहीं ऐसा नहीं, प्रकृति ने सबके लिए स्पेस दिया है। मेरे को जब सूरज रोशनी देता है, चंद्रमा अपनी चांदनी देता है, हवा हवा देती है, प्यास लगती है, पानी देता है, वो सब 5 तत्व मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, लेकिन ये मानव क्यों करता है? तो ये सब मैं अवेयरनेस कर रही हूं लोगों को कि एक सिर्फ इंसान है जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसको हटाना है, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और यही बस मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है।
1: समाज से किस तरह का सहयोग चाहते हैं, या हम यूँ कहें कि समाज से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं?
0: मैं समाज को अपने जैसा समझती हूँ, सिर्फ समाज की जो प्रॉब्लम है वो समाज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है बना हुआ है, हमारे को जो हमारी शिक्षा पद्धति है बचपन से लेकर, जब हम छोटे बच्चे को, मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जब मैं दिल्ली में जा रही थी किसी जगह पे ट्रेन में, तो बच्ची मेरी तरफ देख के मेरे पास आ रही थी, तो वो उसकी माँ उसको खींच के अपने पास ले गया कि नहीं नहीं उनके पास नहीं जाना। तो ये हम बचपन से जो शिक्षा देते हैं बच्चों को अपने, वो सही शिक्षा देनी चाहिए, ताकि अगर हम लोग बच्चों को डराने के लिए हमारे यूज करते हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो हम तुम हिजड़ा को पास छोड़ें,

0: तो ये डराने वाली जो चीजें हम बचपन से सिखाने लग जाते हैं, और हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो जब हम जेंडर स्टडीज करते हैं तो जेंडर में सिर्फ फीमेल को पढ़ाया जाता है, ट्रांस वुमन के लिए नहीं कोई स्पेस है, तो वहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम है, हमारा सिस्टम बदलना चाहिए, इसमें तीसरे को स्पेस देना चाहिए।
1: धनंजय जी, आपसे बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे, एक और गीत आपकी पसंद का हम सुनवाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को।
0: मेरा एक और फेवरेट सॉन्ग है मदर इंडिया का, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी मैंने जिंदगी में दुख झेले हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये तो डिसऑर्डर लोग हैं, इनको दुनिया में क्यों पैदा कर दिया। जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई तो लोगों ने कहा कि इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए गाना डेडिकेट करना चाहता जो नफरत करते हैं, उनको उनके लिए डेडिकेटेड है, नफरत से नहीं प्यार से जीतो, तो ये गाना उन लोगों के
1: जी बिल्कुल। धनंजय जी, हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: धनंजय जी, आज बहुत से हमारे सुनने वाले ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं समाज को बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं दोबारा से वही शब्द यूज करूंगी, हमें स्पेशल राइट्स नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें स्वीकारिता चाहिए। हम आपके हार्ट में रहना चाहते, हम आपके दिल में, हमें आप एक बारी अपने पास बिठा के तो देखो, प्यार से बुला के तो देखो, तो हम लोग वो काम कर देंगे जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। हम लोग वो कर सकते हैं जहाँ पर एक मर्द औरत भी नहीं कर पाते हैं, हम वो कर सकते हैं। बस हमें ये चाहिए कि एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें फैमिली में घर जाना है, वापस घर वापसी चाहिए, हमें माँ बाप के साथ रहना है, माँ बाप की सेवा करनी है, अपने भाई बहनों के साथ रहना है। बस इतना ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें एक्सेप्ट कर लीजिए।
0: जी धनंजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सपने हैं, जो भी आपने सोचा है, आपके सब सपने साकार हों। आप आकाशवाणी चंडीगढ़ में आई, आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आकाशवाणी चंडीगढ़ के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: दोस्तों, आज यादों का कारवा में हम आपको सुनवा रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट धनंजय चौहान के जीवन संघर्ष की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
2: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बोल दिया।
3: क्या मैं बोलूं?
4: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो संगिनी रशिम और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। इस खूबसूरत दिन को आगे बढ़ाते हैं बेहतरीन संगीत और सकारात्मक सोच के साथ। हमें कॉल करें और बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे इन पांच फिल्मों से। पांच फिल्मों के नाम हैं मेरी जंग, मुगले आजम, क्रांति, अमर अकबर एंथनी और हम आपके हैं कौन। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। लीजिए तो इसी के साथ हम अपने पहले श्रोता से बात करते हैं। हेलो, हेलो सिटी ब्यूटीफुल। हेलो,
5: हेलो
1: जी, नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
1: सर, मैं किससे बात कर रही हूँ?
5: जी, मैं अरविंद कुमार गांव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ जी।
1: अरविंद जी, मोरनी से बात कर रहे हैं आप? अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही खूबसूरत गांव है आपका तो।
5: हाँ जी, बिल्कुल जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। टूरिस्ट, आज तो संडे है, वैसे ही रश होगा?
5: हाँ, रश होगा संडे जी, टिकरताल में आज रश चला हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
5: मैडम, हम अकबर एंथनी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, उस फिल्म का कोई भी गाना सुना दीजिए।
1: ठीक है सर, आपकी पसंद का ये गाना चला रहे हैं सर, माई नेम इज एंथनी गंजाल्वेस।
5: जी बिल्कुल जी।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।
0: राइट।

0: Trolley number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No. Anthony Gonsalves.
3: Oh, yeah.
4: Ganapati Bappa.
5: Oh, yeah.
6: ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
7: ਆਈਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸੇ। ਹੈਲੋ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਹੈਲੋ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ,
8: हेलो
7: जी।
8: हाँ जी नमस्ते।
7: नमस्कार सर, आपका शुभ नाम बताएं।
8: मैं मोहम्मद जाकिर बोल रहा था, सेक्टर 12 पंचकुला से।
7: सेक्टर 12 पंचकुला से मोहम्मद
8: जाकिर।
7: जाकिर जी, जी जी मोहम्मद जाकिर जी, कैसा चल रहा है आपका संडे?
8: बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया।
7: चलिए अभी अगले हफ्ते के लिए पूरे तरह से आप रिफ्रेश हो जाएंगे।
8: जी जी बिल्कुल मैम
7: जी,
8: हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं ना हमारा काम चलता है
7: मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएं सर कौन सी मूवी से सुनना चाहेंगे अगला गाना?
8: क्रांति फिल्म का गाना सुना दीजिए, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
7: बिल्कुल सर बिल्कुल, आपकी फरमाइश पर अगला गाना जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
8: शुक्रिया, थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे क्रांति मूवी से ये गाना जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आइए सुनते हैं अपने अगले श्रोता की बात। हेलो हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार सर, मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: नरेंद्र जी, जी नरेंद्र जी, बताएं, बची हुई 3 मूवीज हैं सर, मेरी जंग, मुगले आजम, हम आपके हैं कौन, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: आप मुगले आजम का गाना जो मशहूर है, जब प्यार किया तो डरना क्या, लता मंगेशकर का सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, पूरा मशहूर गाना है, लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: जी शुक्रिया।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: हेलो
0: जी,
1: हैप्पी संडे मैम।
0: थैंक यू सर, हैप्पी संडे आपको भी।
1: मैं दीजिए, तीन मोबाइल पे उंगलियां दुख रही हैं, मैं बाकी मोबाइल और रेडियो बंद कर लूं। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज।
0: मैं रश्मि बोल रही हूं, मैं आपका नाम जान सकती हूं?
1: मैं 50 वर्ष पुराना श्रोता हूं जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ का, सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी बोल रहा हूं जी।
0: रमेश जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके, आप इतने पुराने श्रोता हैं हमारे।
1: तो जैसे ही आज मैंने कहा एक नई आवाज है, तो आपकी आवाज ने मुझे बहुत आकर्षित किया।
0: शुक्रिया रमेश जी, बहुत
1: तो
0: बहुत शुक्रिया।
1: मन हो आया कि चलो बात की जाए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इसके पीछे एक और राज था कि 2010 में अनिल कुंज भाईजान के साथ एक रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी माँ की, फिल्म मेरी जंग से।
0: अच्छा जी।
1: तो वो अक्सर बीमार रहते थे, तो मैंने उनकी आवाज रिकॉर्ड करवाई थी, मतलब फोन मिलाया था
0: जी।
1: और लकली मिल गया।
0: अरे वाह।
1: और उसके कुछ दिन बाद ही वो चल बसी।
0: अच्छा।
1: तो एक याद थी, मैंने कहा शेयर भी करता हूँ और गीत भी दोबारा सुनता हूँ। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
0: बिल्कुल रमेश जी बिल्कुल।
1: आप तो मेरे माता जी ना, उससे थोड़ा उनको एनकरेजमेंट मिलती थी, तो उनको मैं गीत सुनाया करता था।
0: ये है ही बहुत खूबसूरत गाना। बिल्कुल बहुत खूबसूरत गाना है रमेश जी, आपकी पसंद पे से मैं ये गाना भी चला रही हूँ।
1: ग्रेट ऑफ यू जी, थैंक यू।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, मैं किससे बात कर रही हूँ?
1: पंचकुला से खुश मोहम्मद बोल रहा हूँ।
0: पंचकुला से कौन बात कर रहे हैं?
1: खुश मोहम्मद।
0: खुश मोहम्मद जी, खुश मोहम्मद जी, आप बताएं हम आपके हैं, कौन मूवी का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: कोई सा भी सुना दीजिए मैडम जी।
0: जी, आपकी फरमाइश पे हम चला रहे हैं दीदी तेरा देवर दीवाना गाना। हम आपके हैं कौन से?

0: इसी गीत के साथ ये प्रोग्राम समाप्त होता है। हेलो सिटी ब्यूटीफुल, मैं रश्मि को दीजिए इजाजत।
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बोल दिया।
2: क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ। ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 12 बजने को है अब समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ क्लैन अख्तर, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मुंबई के कोस्टल रोड पर आज सवेरे एक BMW कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। घायल व्यक्ति को नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां और देश अब भारत को अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज नई दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। इस दौरान मतदाता सूची में सुधार के लिए दावे और आपत्ति दर्ज की जा सकेंगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में परिषद की सफलता पर बधाई दी है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए परिषद की प्रतिबद्धता दर्शाता है। भारत ने जापान के आयची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। एला वेनिल वेलारिवन, सोनल मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉक्टर मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की है। जापान एशियाई खेलों में महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया था। चीन के साथ क्वार्टर फाइनल में वर्षा के कारण रद्द होने से बेहतर रैंकिंग के कारण बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंद दिया है। दीपिका सहरावत ने 8, इश्का चौधरी ने 3, जबकि लाल थन तुलांगी और नेहा ने 2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना कर संस्कृति उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
3: गणपति बप्पा
4: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
2: और आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई अगले प्रोग्राम के लिए यादों की महफिल।

0: जख्म फिल्म से आप अलका याग्निक को सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: फिल्म सड़क से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
2: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल विविध भारती से।

0: फिल्म डैडी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। तलत अजीज की आवाज में सूरज सानिम ने इसे लिखा, राजेश रोशन का संगीत।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਪਨੀਰ। ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं।
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपनापन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे बाकी के कार्यक्रमों की। आपसे कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर, पहले हिंदी में हमारे केंद्र से। उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए। यही क्रम रहता है 6:10 पर, पहले हिंदी में। उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले करेंगे 2:15 पर, 5:00, 6:00, 8:45 पर समाचार संध्या, और 11:00।

शाम 5:30 बजे आज आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम शाम सुहानी। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक जगदीप सिंह से। इनसे बातचीत का दूसरा भाग सुनेंगे आप आज के इस प्रोग्राम में, और बातचीत की है रमेश कपूर ने। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर।

अमृतवाणी कार्यक्रम में आप शब्द श्रवण करेंगे शाम 6:30 पर, शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार सुनिए, उसके बाद कुछ पंजाबी गाने, रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार और उसके बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत। ये तो थे कार्यक्रम जो आप हमारे केंद्र से सुनेंगे और कुछ कार्यक्रम अपने कार्यक्रमों के साथ साथ हम विविध भारती मुंबई से भी रिले करते हैं। इन कार्यक्रमों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर प्रोग्राम होगा, 2:00 त्रिवेणी, 2:30 सदाबहार नगमे और 3:30 आप सुनेंगे प्रोग्राम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग प्रोग्राम में आज का नाटक है स्वप्न वास्वदत्ता, इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे महाकवि

0: नाटक आप हिंदी रेडियो रूपांतर सुनेंगे। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे और निर्देशक हैं स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में संगीतकार उत्तम सिंह से की गई बातचीत का आप अगला भाग सुनेंगे। शाम 7 बजे फौजी भाइयों के लिए सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल B.S. संतोष बाबू की शौर्य गाथा हम आपको सुनवाएंगे। रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में आप सुनेंगे झलकी चिट्ठी, लेखक सुनील अब्राहिम और निर्देशक गुरमीत रामल मीत। रात 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम केंद्रित है फिल्मकार महेश भट्ट पर। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज बाकी के कार्यक्रमों की, कुछ हमारे और कुछ जो हम विविध भारती मुंबई से आपके लिए रिले करते हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को हैं। आप सुनिए प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अपने जालंधर केंद्र 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को LPG से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि मौजूदा समय में बढ़ते औद्योगिकीकरण के दौर में पर्यावरण प्रदूषण ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदूषित वातावरण को रोकने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण सबसे प्रभावी उपाय है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण की दिशा में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। श्री बेदी कल जींद के विश्राम गृह में सेवा ही संकल्प अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पौधारोपण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से अधिक पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए एक पेड़ माँ के नाम जैसे विभिन्न जागरूकता अभियानों को सफल बनाने में जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने रोहतक में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण बेदी ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों को सुरक्षा, वेतन और हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सभी 17 मांगें मान ली हैं।

अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कृष्ण बेदी ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों को सुरक्षा वेतन और हर प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की सभी 17 मांगे मान ली हैं। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर हो रहा है। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीन सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में जनसमस्या सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों द्वारा विकास से संबंधित जो भी मांगे उनके समक्ष रखी जाएंगी, उनका नियमानुसार जांच कर प्राथमिकता के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने गोदरेज एरिस्टोक्रेट सोसाइटी में सेक्टर 49 को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ने वाली 24 मीटर सेक्टर रोड का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही 24 मीटर रोड को लेकर एक नीति लेकर आएगी। पलवल अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी के अध्यक्ष पंकज विरवानी ने बताया कि मंडी में 1509 किस्म की धान की आवक हो रही है। आढ़तियों द्वारा धान की खरीद 3800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है और इसकी खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसानों को अटल कैंटीन से 10 रुपये में भोजन की थाली सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंडी में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ाव दी शुरुआत अज केंद्रीय कानून अते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिलका दी सादकी सरहद तो करनगे। फाजिलका पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने सूबा भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों अते होर पार्टी आगुआं नाल 1971 दी भारत पाक जंग दे शहीदां नूं आसफ वाला जंगी यादगार ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। मीडिया नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि इस यात्रा नूं सियासी नजरिए तो नहीं देखा जाना चाहिदा जिवें कि कुछ लोग कर रहे ने।
1: नशा मुक्त पंजाब, नशे से हम दूर रहें और हम पंजाब विकसित पंजाब बनाएं। हम कैसे बनाएंगे? जब हम स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे, हम पंजाब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए ये यात्रा है। कुछ लोग इसको राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये यात्रा राजनीति के चश्मे से देखने की विशेषता नहीं है।
0: उन्हें कुछ नशा प्रभावित परिवारों के मैंबरों नाल भी मुलाकात की अते उन्हां नाल दुख सांझा किया। इस तो पहला यह यात्रा 18 सितंबर को सरहदी जिले पठानकोट तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन वालों शुरू की गई सी। यह मौजूदा समय में पंजाब में दरपेश तीन बड़ी चुनौतियां वादी नशाखोरी, विगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर पद्धर से भ्रिष्टाचार के केंद्र से। यह नशियां विरुद्ध लड़ाई में एक लोक लहर में बदलने लिए सूबे के सारे 117 विधानसभा हल्कों को कवर करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि उन्होंने सरकार मौके माली सहायता और संस्थागत सहयोग का मजबूत माहौल तैयार करके सूबे के नौजवानों के सुपनों साकार कर रही है। मोहाली विखे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के लीडरशिप सम्मेलन 2026 दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों में ना तो हुनर की घाट है तो ना ही ऊर्जा की। सरकार का ध्यान उन्होंने अजिहा ढुकवा मंच मुहैया करवाना है जिथे वह अपनी काबिलियत का विखावा कर सकन, कारोबार खड़े कर सकन, रुजगार के मौके पैदा कर सकन। उन्होंने कहा कि भारत लगातार विश्व पद्धर से विकास के एक महत्वपूर्ण केंद्र वजो उभर रहा है। उन्होंने नौजवानों को सद्दा दिता है कि वह पंजाब के बदलाव में भागीदार बनन, इकट्ठे होकर अगले 25 साल अजिहा भारत के पंजाब बनाने योगदान पाउन। अमृतसर पुलिस ने ड्यूटी दौरान मारे गए अपने सहायक सब इंस्पैक्टर ASI हरजीत सिंह की हत्या के एक मुलजम को मुकाबले तो बाद हलाक कर दिता है। यह मुकाबला बीती देर रात जिले के इस्लामाबाद इलाके में होया। इस मामले में दूजे शक्की मुलजम को काबू करने तलाशी मुहिम जारी है जो हनेरे का फायदा चुके मौके तो फरार हो गया है। मारे गए

लीजिए अगला गीत सुनते हैं फिल्म कलाकार से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: रन अप पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: लीजिए आइए, अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। इसे गाया है सुनिधि चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह ने। संगीत दिया है विशाल शेखर ने और गीत को, इस खूबसूरत गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से कुछ फिल्मी संगीत। आइए अब आपको अपने मुंबई केंद्र ले चलते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए।

0: वारिस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे। वर्मा मलिक ने इसे लिखा, उत्तम जगदीश का संगीत। आपके संदेश हम तक पहुंचे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, सभी लोग घर पर ही होते हैं और सड़कें कुछ खाली खाली दिखाई पड़ती है। बाजारों मार्केट में कुछ भीड़भाड़ सी दिखाई देती है और ये सब देखकर लगता है कि रविवार अपनी पहचान स्वयं करवा रहा हो। जी हाँ, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि हम अभी हैदराबाद में हैं, बेटिया जवाईसा के साथ हैं और यहाँ पर गणेश विसर्जन चल रहा है और बाद में प्रसाद भंडारा होगा और हम बस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पर विशेष पंक्तियां, ढलती हुई शाम ने एक नया पैगाम दिया, दो अजनबी धड़कनों को एक ही नाम दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी है आपने।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: अरोड़ा प्लाईवुड
4: यहाँ है पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और एचडीएचएमआर प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
3: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845 NAC मनी माजरा चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
0: नहीं हुई ये भी हमें लिख भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे सोमवार आने को होता है तो कैसा लगता है, क्या अभी भी ऐसा लगता है कि परीक्षा आने वाली है, अभी भी ऐसा लगता है कि स्कूल में जाना है, किस तरह के भाव आते हैं मन में, ये भी लिख सकते हैं। दिलचस्प संदेश रहेंगे तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
5: एक विलक्षण गायक,
6: अरे ओरे है।
5: संगीत के साधक,
6: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
6: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: गणपति बप्पा
7: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

फिल्म कलाकार से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। इस गीत के बारे में बहुत से संदेश आए हैं कि ये गीत तो हमने सोचा ही था और हमारी लिस्ट से, हमारी फहरिस्त से मेल खाता है ये गीत। जी हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आसान शब्दों में ये पता चल गया था। और वैसे भी हम भी चाहते हैं कि आपके आप जो कुछ गीत चुने वो आसानी से आपको पता चल जाए, क्योंकि हमारा मकसद तो संगीतमय सफ़र के साथ आपके साथ चलना है ना। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रविवार ही क्या अपितु आने वाला हर एक पल ही नया है, ऐसी अनुभूतियों में ही रहते हैं हम और ऐसे ही जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि हवाइन गिटार का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है नीले नीले अंबर इस गीत पर। एक और श्रोता लिखती है कि आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ पर प्रोग्राम जरूर सुन रही हूँ और आपके साथ ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखती है कि आज की इबारत पढ़कर ऐसा लगा जैसे शाम के रंगों में कोई पुराना गीत धीरे धीरे उतर आया हो। कहीं इंतजार है, कहीं एतबार है, कहीं साथ चलने की चाह है और कहीं बिना कहे समझ लेने वाला रिश्ता। शायद मोहब्बत भी ऐसी होती है, बड़े वादों से नहीं, किसी का साथ साधारण से रास्ते को बहुत ही अच्छा, बहुत ही हसीन बना देता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके संदेश इस सुरीला सफ़र को खूबसूरत बना रहे हैं। और फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ और आपके संदेशों का इंतज़ार है कि अब कैसा लग रहा है रविवार।

कश्मीर की गली, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। SH बिहारी ने इसे लिखा, OP नैयर का संगीत। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी इतवार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मैं एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। इतवार का दिन मेरे लिए बड़े मायने रखता है। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, तो इस दिन हमारी कॉलोनी के सामने जो पार्क है वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेलते हैं और बिना झिझक के मैं उनकी टोली में शामिल हो जाता हूँ, खेल लेता हूँ और उन्हें एहसास बिल्कुल नहीं होता कि कोई बूढ़ा हमारे साथ खेल रहा है। इस तरह मेरा इतवार बड़े मज़े से गुजर जाता है। क्या बात है, ये तो सचमुच बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि घर पर ही बैठे हैं, कोई घूमने जाने को तैयार है और कोई घूमने जाने को नहीं तैयार है, शायद ऐसा ये लिखना चाह रहे थे। मौज करो, सब झूमो गाओ, आज रविवार है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती है कि विविध भारती के साथ काम काम नहीं लगता है, संगीत में इंजॉय करते हुए हम हाथ का काम कब पूरा हो जाता है, हमारे हाथ से किए हुए काम कब पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे रोज़ ही छुट्टी हो, काम भी हो, सब कुछ एक बराबर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता लिखते हैं, जैसे हफ्ते की जेब से गिरा हुआ कोई खाली लम्हा जिसे उठाकर हम थोड़ी देर अपने पास रख लेते हैं, ना कोई जल्दी ना कोई हिसाब, बस धूप चाय और खुद से मुलाकात। ये है रविवार इनके हिसाब से। क्या बात है, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने ये लिखा है, बहुत ही सुंदर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि नमस्कार, ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा है। जब ये आवाज़ गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रविवार का दिन सुकून, पुरानी यादों और अपनों के साथ फुर्सत के पल बिताने का नाम है। भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मेरा तो रविवार की सुबह की चाय की चुस्कियों और विविध भारती की सुरीली धुनों के साथ बेहद खास अंदाज में बीत रहा है। क्या बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं, बिग फैन ऑफ विविध भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन प्यार भरे संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा कल्याण जी आनंद जी की तर्ज। और हमारे पास संदेश पहुंच चुके हैं। जी हाँ, एक संदेश यह आया है कि नीले नीले अंबर पर जो गीत अभी आपने सुनवाया कलाकार फिल्म से, उसमें जो विशेष वाद्य है दरअसल वो स्पेनिश गिटार है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का रविवार मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे गीत सुनने को मिल रहे हैं और अभी याद आया कि कश्मीर की कली फिल्म रविवार को ही देखी थी। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि हम कमेंट्स करें या ना करें लेकिन फिर भी श्रोताओं के शानदार कमेंट्स जो पढ़ते हैं और साथ में सुनवाए जाते हैं इस प्रोग्राम में, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और मन आनंदित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि 70, 80 और 90 के दशक में इतवार का बेसब्री से इंतजार रहता था और उस वक्त फिल्में देखते थे टीवी पर, दूरदर्शन पर, और साथ ही विशेष काम और शाम के खाने का इंतजाम करके हम बड़े शौक से हल्के फुल्के नाश्ते के साथ फिल्म भी देखते थे। और वो जो वक्त था कि सब परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे गीत बज रहे हैं और आज का रविवार बहुत खूबसूरत तरीके से गुजर रहा है सुबह से लेकर अब तक। जी हाँ, और आगे भी चलता रहेगा, बने रहे विविध भारती के संग।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत आपने सुना, शर्मीली फिल्म से नीरज ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की धुन थी। और बस ये गीत यहीं तक आपको सुनवा पाएंगे क्योंकि वक्त हो चला है। जाते जाते आपके दो मैसेजेस संदेश हम पढ़ देते हैं कि एक श्रोता ने लिखा, हम आपको वचन देते हैं कि हम हमेशा विविध भारती के साथ बने रहेंगे क्योंकि विविध भारती हमारे दिलों की धड़कन है और धड़कन तो एक पल को भी नहीं बंद होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। और साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले के इतवार और आज के इतवार में बहुत फ़र्क आ गया है। महानगर में शनिवार इतवार का मतलब है बाहर की आउटिंग करना और हमारे उस इतवार का मतलब था साथ में बैठना, घर पर बैठना। जी हाँ, फ़र्क तो बहुत आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए और आप बने रहें हमारे साथ। इस प्रोग्राम से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।
1: गणपति बप्पा।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। आज की त्रिवेणी आधारित है आंसू पर। आंसू देखने में पानी की कुछ बूंदें हैं, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का पूरा समंदर समेटे हुए हैं। कभी खुशी के क्षणों में आंखें नम हो जाती हैं, और कभी दुख मन को इतना भर देता है कि आंसू स्वयं शब्दों का स्थान ले लेते हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी आंसू बता देते हैं कि मन के भीतर क्या चल रहा है। शायद इसीलिए आंसुओं को मन की वो भाषा कहा जाता है जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं है, विज्ञान की दृष्टि से भी आंसू हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी आंखों में आंसू की एक पतली परत बनी रहती है जो आंखों की सतह को नम रखने, उसे चिकनाई देने और धूल मिट्टी जैसे छोटे कणों से सुरक्षा देने में मदद करती है। पलक झपकाने पर ये परत आंखों की सतह पर फैलती रहती है।

वैज्ञानिक रूप से आंसू कई प्रकार के माने जाते हैं। बेसल आंसू आंखों को लगातार नम और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब आंख में धूल, धुआं या कोई बाहरी कण चला जाता है, तब रिफ्लेक्स आंसू निकल सकते हैं और आंख को उस परेशानी से बचाने में सहायता करते हैं। वहीं भावनात्मक परिस्थितियों में निकलने वाले भावनात्मक आंसू हमारे मन की अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। किसी की उपलब्धि पर गर्व, किसी अपने की चिंता, अचानक मिली खुशी या किसी मार्मिक स्मृति का स्पर्श, भावनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आंसू उनका स्वाभाविक उत्तर बन सकते हैं।

आंसू हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य केवल तर्क और विचारों से नहीं बना, वो भावनाओं से भी बना है। आंखों की नमी में कभी बीती हुई यादों की चमक होती है, तो कभी वर्तमान की कसक और कभी भविष्य की उम्मीद। इसलिए आंसू को केवल दुख की निशानी मानना उचित नहीं। वो कभी खुशी के मोती होते हैं, कभी पीड़ा की अभिव्यक्ति और कभी आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा। आंसू चुप जरूर होते हैं, मगर उनका अपना एक स्वर होता है, ऐसा स्वर जिसे आंखें बोलती हैं और संवेदनशील मन सुनता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब

0: यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिल्का के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
1: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
0: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की तीन प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
2: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
3: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
4: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य, यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं, उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
3: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
6: पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
2: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
3: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई है। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया

0: से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा शेफाली वर्मा, शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज, और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

जब इश्क किया तब सोचा नहीं, हाँ जब इश्क किया तब सोचा नहीं, इस इश्क में क्या क्या होता है, जब इश्क हुआ तो इश्क में

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मधुमति फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। और इससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया, वक्त फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में आपने सुना था, साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा, रवि का संगीत।
1: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
2: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
1: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
2: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द?
3: बच्चा!

0: इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियाँ देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

आशा भोसले की आवाज़ में गीता भी आप सुन रहे थे साहेब बीवी और गुलाम फिल्म से शकील बदायनी ने इसे लिखा और हेमंत कुमार का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत गाइड फिल्म से अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल एस डी बर्मन की तर्ज। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे संपन्न होता है।

0: यह विविध भारती लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दिया दिलो वधाइयां।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में मनचाहे गीत, जिसका नाम है आपके प्यार भरे फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में शामिल होने को एकदम तैयार है। आज का ये गीतों का सफर आप तय करेंगे अनुराधा उपाध्याय के संग। चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ।

जानी दुश्मन इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी गांव हिवरखेड़ तेलहारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार, भारती, पारस पायल, श्वेता और उर्वी बैन ने। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल ने। ग्राम खकड़ तहसील कोंच जालों उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुजर, सत्यम सिंह, अंशराज एवं उनका समस्त परिवार। संबलपुर कांकेर से ज्योति ओजस्वी इशिका फागुराम यादव ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू तासू, अर्नव आनंद, सत्यम ने इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी, और साथ ही आनंद।

करना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

मन्नाडे की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्ज़ा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छे गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागे ने इसे सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह, हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने इसे सुनना चाहा था। और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानू के, साथ ही नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी हटौद बाज़ार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

0: लता मंगेशकर और सखियों की आवाज़ों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टी डी मल्होत्रा।

0: हाल ही से जयवीर सिंह ठाकुर ने, और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने शहर अंबिका चौक बीड से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था, और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहेगी
2: गणपति बप्पा
3: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना बन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
4: ये है विविध भारती।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफाली का फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
2: और तोड़ो?
0: नहीं नहीं, और न तोड़ो।
1: क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं?
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदयन से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जेटी।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है, है? अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। तब काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिखने वाली

0: आसन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी, तीव्र गंध वाले सप्त छंद वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
1: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
2: हाँ हाँ वही तो है चेटी अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
1: हाँ यही करें राजकुमारी।
0: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
3: कैसे जाना वसंतक?
0: इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके की फूल तोड़ लिए गए।
3: वसंतक इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
0: बहुत अच्छा प्रभु बहुत अच्छा, पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
3: अच्छा चलो।
1: अरे ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी, कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं। हाँ हाँ ऐसे ही करो।
0: अरे बचाओ बचाओ इन मधुकरों से, इन भ्रमरों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
3: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे, अतः यहीं बैठो।
0: जी
1: राजकुमारी पद्मावती हम तो यहाँ बंदी हो गए।
2: लेकिन प्रसन्नता है सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
4: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, भाग्य की कृपा।
1: अरे आर्य अवंतिका की आंखों में ये आंसू कैसे?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
0: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
3: पूछो वसंतक।
0: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
3: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक, मैं कुछ नहीं कह सकता।
0: मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अब तो सच सच बता दें प्रभु।
3: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हर नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
0: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ है।
3: मित्र वसंतक मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
0: अब देवी वासवदत्ता कहाँ है, वे तो कभी की परलोक सिधार।
3: हाँ मित्र तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया, अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
0: अरे अरे आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
1: अवंती के आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो यही समय है हम यहां से निकल चले।
4: नहीं राजकुमारी व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं, आप यहीं ठहरें मैं ही यहां से चली जाती हूँ।

0: हाँ यही उचित है, देवी पद्मावती हमारी के पास चले।
1: सचमुच जाऊं?
2: हाँ जाओ पद्मावती जाओ, वे दुखी हैं उन्हें सांत्वना दो।
3: आरी की जय हो
4: पद्मावती। बैठो, जल ले आए वसंत।
5: जी
4: काशरज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
3: अथवा किसी दुख से?
4: नहीं पद्मावती नहीं।
5: महाराज उदयन, अपराहन वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृद जनों को दर्शन दें।
4: ठीक कहा वसंतक, आओ चले।
6: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
3: आई।
6: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है, तू जा और आर्य अवंतिका को बुला ला।
3: राजकुमारी कहाँ है?
6: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंत

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके सैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां सैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो ये सैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें।
2: हां यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाएं और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है, लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासव दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था। नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।
3: कितना

0: आंसू रहे। ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती अस्वस्थ हो गई। अरे यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है, चलो उसी की शैया पर बैठो।
1: क्या क्या बात है, इस शैया पर बैठते ही मन मन कैसा आह्लादित हो रहा है। इसकी श्वास प्रश्वास तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई।
2: वासुदत्ता,
1: ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
2: प्रिये,
1: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
2: अवंती राजपुत्री,
1: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
2: शिष्य,
1: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
2: क्या तुम कुपित हो?
1: नहीं, दुखी हूँ।
2: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
1: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
2: वासुदत्ता, प्रिय,
1: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
2: प्रिय,
1: चलो चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो। अब चलो।
2: ठहरो वापस, ठहरो वासुदत्ता, ठहरो। अरे ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
3: राजन, जाग गए आप?
4: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
3: क्या
4: वासुदत्ता जीवित है?
3: हाँ, वासुदत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गई।
4: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
3: समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासुदत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
4: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वो सदा बना रहे।
3: समझा राजन, समझा। इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
4: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासुदत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां अब भी रोमांच है।
3: राजन, व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
5: चलिए राजन, चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल

0: युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब कर्णी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
2: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
2: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से रैभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
2: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कोई वीणा बजा रहा था,

0: पति, घोषवती का स्वर? ये तो वासव दत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ पाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले लें। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासव दत्ता, वासव दत्ता, वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: ओह, विजया, जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य।
3: स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ्य गोत्र कंचुकी और महारानी वासव दत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
4: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
3: जो आज्ञा प्रभु।
5: आर्य पुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
4: हाँ, वासव दत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
5: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
4: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
3: कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज,
4: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
6: आर्य पुत्र की जय हो।
7: आर्य पुत्र की जय हो।
4: आर्य रैभ्य, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
8: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
4: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
8: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
4: आर्य रैभ्य, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासव दत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
9: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
4: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासव दत्ता बस वो ही नहीं है।
9: राजन, संताप न करें।
8: स्वामी, धैर्य धरे, महासेन कन्या वासव दत्ता मरकर भी अमर हैं, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
4: वासव दत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
9: राजन, राज महिषी अंगारवती ने कहा है, वासव दत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं, पहले से ही मनोनीत जामाता ही। इसी विचार से

0: आप उज्जैनी लाए गए थे, फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हों।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका यह कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
2: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
0: ये देखिए पद्मावती जी।
2: अरे
1: देवी, क्या बात है?
2: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासुदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
2: हाँ आर्यपुत्र।
1: तो उसे शीघ्र बुलाएं।
2: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
3: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
2: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतरपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
3: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
2: जी।
4: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
4: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
3: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
0: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
1: मेरे प्रिया वासुदत्ता, सच? अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासुदत्ता को ले अंतरपुर में प्रवेश करें।
4: नहीं देव, उसे अंतरपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्रो राजधर्म के आचार्य, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सादृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
4: स्वामी की जय।
1: महामात्य।
2: आर्य पुत्र की जय।
1: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंधरायण ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
4: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
1: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंती का ही आर्या वासुदत्ता है।
5: आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
6: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों की हित सेवा में लगा रहा, उससे भला अपराध कैसा?
1: मित्र यौगंधरायण, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
4: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके राजन।
1: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
4: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
4: हाँ राजन, सभी जानते थे। महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
1: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे, और हमारे साथ वासुदत्ता भी होंगी।
4: हाँ स्वामी, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई है।
2: और मेरा स्वप्न, मेरा

0: तो ये था नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध दही देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लो तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

0: ये है विविध भारती।
1: गणपति बप्पा
2: बप्पा नु पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दूध दही देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
2: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
2: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
2: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
2: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
2: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहाँ से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी माताजी हम तीनों शायद हमारे

0: शायद हमारे मामा क्या घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया,
0: हाँ,
1: और दौलत को ठुकराया।
0: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए, क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: ये
1: है।
0: लखनऊ की बात है, और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा।
1: जी,
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे, और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था कि जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं वो, और फैमिली में किसी के पास आया नहीं, तो वो चीज़ मुझ में भी आई। और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली, कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था।
1: बाबा,
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी। बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया,
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहाँ हम लोग शायद डेढ़ दो महीना रहे। उसके बाद शायद डैडी ने किराए पर मकान लिया, मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया।
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहाँ से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा,
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा। मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और
1: कौन
0: इससे
1: कौन से शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं, लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है।
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे थे।
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह, क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको,
0: लेकिन हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी, वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते, गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहाँ? रायपुर, फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहाँ से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुँचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे हम लोग।

0: डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे तो नहीं बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
1: जनवरी में
0: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा और छोड़ा। और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
1: बम्बई छोड़ के चले गए,
0: नहीं नहीं घर में छोड़ के चले गए।
1: जी जी।
0: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एले एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे।
1: जी जी।
0: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहाँ चले गए, वहाँ देखा तो उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके। तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है, बोले पहले बजाता है, बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर सुर बहुत है उसके पास, बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
1: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही हो?
0: 12।
1: 12 वर्ष। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
0: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं।
1: पहले नाम बता दें।
0: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह।
1: जी जी।
0: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
1: जी,
0: हिंदी में
1: जी,
0: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे तो वो ज्ञानी, जैसे आज बी ए या एम ए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
1: अच्छा।
0: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर।
1: जी जी।
0: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
1: अच्छा।
0: आज जो पाकिस्तान में है।
1: हाँ।
0: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे।
1: जी जी जी।
0: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गई थी।
1: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप।
0: जी, डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई।
1: जी।
0: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे।
1: जी।
0: 2-3 महीने ही, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूँ।
1: क्या बात है।
0: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है।
1: जी।
0: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया, वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं।
1: वो कहानी में आगे आएगा।
0: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज हुए।
1: बाप रे, 10-12 घर
0: 2 साल में।
1: जी।
0: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंदर गुरुद्वारा था वहाँ रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, मटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही।
1: जी।
0: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
1: बाप रे बाप,
0: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
1: 13.5 घंटे
0: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
1: ओहो।
0: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
1: अरे बाप रे,
0: 4:30-5 बजे।
1: तो कभी 12 साल के बच्चे, कभी ऐसा नहीं होता था कि नीचे खेलें?
0: नहीं,
1: बच्चों के साथ खेलें
0: कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी थी। डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
1: बस उसके आगे
0: माँ ने कहा है खत्म होगी बात।
1: जी।
0: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता कि मैंने कह दिया तो तुमने तुमको करना ही है।
1: कितनी सुंदर बात है।
0: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर।
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ। मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहाँ पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा।
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहाँ ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल।
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बज के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था।
1: जी जी,
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए।
1: हाँ।
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस बिल्कुल।
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: वो भी
1: मोहम्मद शफी के साथ।
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है, बड़ा रिदम विदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा।
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग।
1: जी,
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब, जाके हम लोग हॉल में बैठ गए। अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए।
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है। तो आके कुर्सी में बैठ गए, तो सभी से बाहर आया, हाँ पीटर आजा आजा। उनका नाम पीटर था। बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने, हाँ पीटर आजा आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट है, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गए या 9 हो गया, 8 हो गए, जो भी था याद नहीं था। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया। आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटिशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया। और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आ गया, तुम बजाओ। और मैं नहीं बजा सका उससे,
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे। मैं, मुझे हुआ क्या? शाम को नीचे चले गए, फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है यहाँ, पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना। तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी,
0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए। तो 10 रुपए देख के ही हम सब लोग ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए, तो मुझे बोला ये 5 रुपए जो दे रहा हो ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ,
0: शर्ट फटी होगी
1: जी, जी
0: नहीं है
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, बहुत बड़ी बात,
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं कहा, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को मत्था टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है
1: 12 बरस की उम्र में,
0: नहीं 14 बरस हो गया।
1: अच्छा।
0: 60

0: टू
1: जी जी
0: 14 बरस
1: जी,
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे अगले चलो उठो चलो चलते हैं, कहाँ चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए। दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं। तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
1: गजब,
0: 2 मेरे लिए 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद अपने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया। बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे,
0: ट्रम्पेट बजाया करते थे, और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने बड़े टीचर थे वो, इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना वो हमने महसूस किए और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
0: बाबा जी बोलते। नहीं तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं,
0: मेरे लिए।
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: मुझे कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटो में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिख रहे
1: हैं। गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: तो सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमनी।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: 63 में आ गई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भाई वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पे किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पे किसी को भी ये चीज नहीं मिलती। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र।
0: इतनी कम उम्र, ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: शेख मुख्तार, उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: 6 हड्डी कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिख रहे। हमने 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
1: बाप,
0: 15-16 साल की उम्र।
1: कमाल।
0: वहां से एक कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा, नौशाद साहब का
1: जी।
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं शायद 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था। तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह।
0: सोलो बजाना इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा अच्छा बजाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद साहब की जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है
0: वो मुझे याद नहीं। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करती थी
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करती थी, टाइमिंग
1: अच्छा।
0: पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस। आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना।
1: हाँ, वो ऐसा नहीं होता था।
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया।
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह।
0: आप देखिए वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ।
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम,
1: क्या बात है।

0: फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे,
1: वाह
0: पीटर साहब और डोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ,
1: गजब गजब, क्या बात है।
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तूने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं?
0: ये
1: ओहो
0: 64 की बात है,
1: जी,
0: अब फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात, मैंने कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ
0: पहला सोलो था,
1: जी
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं,
1: जी
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं।
1: बिल्कुल,
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: समबडी इज देयर,
1: एंट्री हो गई
0: समबडी इज देयर।
1: जी। बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो हाँ क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा ऐसा काम।
1: जी
0: हम लोग सब यही होते थे यार, ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई
0: कौन
1: काम है
0: करिश्मा ही का। और वो गाना देखिए 1960 का जो गाना है, रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा, जब प्यार किया तो डरना क्या।
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो भी बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहाँ से निकालोगे? तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूँ। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं तो वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गज्जर जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए
0: जी,
1: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा पूरा। जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ।
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है, पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा स्कोर
1: लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए,
0: और गानों के नोटेशंस करने
1: वो
0: में
1: भी,
0: क्योंकि
1: वो भी, हाँ, वो
0: अलग
1: भी
0: अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे कि वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट?
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे
0: जी, यहाँ तो अभी ट्रैक थे।
1: और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मैड्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे बाप रे,
1: ये हमने मैड्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन, 7 दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब,
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया, ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से,
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो हाँ, डॉल्बी आप लोगों ने किया था
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस हैं, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट
1: सारे किए हुए
0: जी,
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही है, वो रखा हुआ पहले का,
0: हाँ हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा, कितना

0: माइन्यूट काम है, जैसे
1: इस तरह से
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात यह है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपए खर्चा हुआ था
1: जी,
0: उस टाइम पे। मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है।
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपए पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो।
1: जी
0: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
0: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
0: ये सुनाइए,
1: सुनते हैं।
2: वफा की राह में

0: देखिए, बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आपने,
1: तो यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी,
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर।
0: जी जी जी,
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है, वायलेंस की डबिंग है, वो सब लिखना, वो सब उसने किया हुआ है। बात बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई।
0: जी जी
1: जी,
0: क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में, जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी, नौशाद साहब के आते उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद शफी साहब थे
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल
1: जी,
0: गया
1: जी, क्योंकि शफी साहब काम करते थे, हम लोग बजाते थे
0: जी।
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया जी, चाय पीने, चाय पीते हैं, चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है,
0: आशियाना
1: आशियाना। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए, रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए, बोले आओ सभी मियाँ, किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है? देखा तो हुआ इसको, अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना, शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे? मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब, मेरे से अब काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर? बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा, कर लेगा ये पूरा काम? बोले हाँ। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: है। नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है, तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी, वो बैठते थे, एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह,
1: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे हैं
0: जी,
1: गुलाम अली साहब से आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के, रफी साहब, लता जी, आशा जी, सब उस कुर्सी पर बैठते। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी। आओ उत्तम, आओ उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी,
1: तहजीब और इज्जत
0: जी,
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना, तो मुझे उत्तम साहब। तो मैं उनको जी, नाम तो मैं उनका ले नहीं सकता था, तो जी जी जी करके बात करता था, या अंकल बोल देता था। कल सफी मियाँ आपको छोड़ के गए और कहे गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का? मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी,
1: क्या उम्र होगी मेरी? 48, 58, 68, 24 साल की उम्र
0: जी जी,
1: 23-24 के
0: जी।
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
0: जी,
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े, बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूँ।
0: अरे बाप रे,
1: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
0: हाँ।
1: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपये रखेंगे आने का।
0: हाँ।
1: वैसे उस टाइम पे 200, 250, 300 रुपये में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा?
1: 750 रुपये
0: जी।
1: बोले ठीक है,
0: 750 रुपये एक गाने
1: का? गाने का।
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो, वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह।
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे, 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना, मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम, हाँ

0: नजदीक आ गए होंगे, कितना
1: जी
0: समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
1: जी।
0: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
1: अबू
0: ले चलिए। मैं ले गया, वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ही हुआ।
0: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब अबू और प्रीति, अबू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब नाम लेके पुकारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलती थी।
1: हाँ।
0: पता नहीं क्या बात है।
1: अरे
0: हाँ पता नहीं, आई डोंट नो, उत्तम जी आ गए बेटा।
1: वाह।
0: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
1: जी नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते, अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है उसको।
0: नहीं, इस पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
1: जी
0: माई फ्रेंड का गाना है वो।
1: हाँ हाँ,
0: रफी साहब का गाया हुआ गाना है, नैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
1: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं उसके बाद।
0: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी जी,
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया है। हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए बाहर। उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब करके,

0: जी जी
1: वो बाहर बैठे हुए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूर्य साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए। नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठिए। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर, मेरे डैडी बोलते हैं उनको,
0: इज माय
1: फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन? सर वो कहते हैं ना चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन। यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुनाओ। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोलका बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया था।
0: फेलिक्स की दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरडिया साहब ने वो पोलका सिखाया था
0: जी।
1: वो पोलका कुछ 9-10 मिनट का है और वो पोलका ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम,
1: हाँ, इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी।
1: सोनिक साहब, हाँ। इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा, उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे, अरेंजर मुझे याद नहीं
0: जी
1: जी। रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम,
0: हाँ
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग। तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब
0: जी।
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनाओ। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाओ। तो वो बैठ गए, एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए। और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने। तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का
1: गाना। हिंदुस्तान की कसम, और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा
1: है, उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहता।
0: ये किस धुन पे किया था?
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी।
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर
1: था। लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से,
1: बज गया।
0: वाह,
1: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए। एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने, सर या आई प्लेड दिस तारारी री री तिरी री तारारी तरर तररी री द द द त त, ये बजाया मैंने।
0: हाँ वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
1: लाया तो हूँ।

0: बिल्कुल सोलो में।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: यहां से यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन
0: बहुत गानों
1: बजाया
0: में सोलो बजाया,
1: जी,
0: फिर
1: कुछ
0: उनका
1: गानों का जिक्र हो जाए
0: बैकग्राउंड मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से गाने हैं।
1: जी।
0: हाँ ये गाना याद है मुझे, बाकी
1: जी।
0: याद नहीं है मुझे। हर तरफ अब

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ के

0: 107.2 MHz पर श्रोताओं, शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रही हैं। राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: आज बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट लैंड तो है, लेकिन उसमें कोई फॉरेस्ट का नाम निशान नहीं। उसमें फॉरेस्ट की अफॉरेस्टेशन की आवश्यकता है। सस्टेनेबल अफॉरेस्टेशन का वास्तविक लक्ष्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि स्वयं और स्वनिर्भर इकोसिस्टम को फिर से स्थापित करना है। डेवलपमेंट को एडवोकेशन का एक रूप मानना भी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है। विकास के लिए मजबूत हेल्थ सिस्टम और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 25 से 22 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर इस समारोह को आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफालवा युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। भारतीय वायुसेना जोधपुर वायु स्टेशन पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। 14 दिवसीय यह अभ्यास मंगलवार को संपन्न होगा। यह अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायुसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, SU-30 MKI और राफेल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने यह टिप्पणी की।
3: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: बांग्लादेश के ढाका में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में एक बड़े अभियान के अंतर्गत 527 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने की सामग्री और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारिविन ने 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिला निशानेबाजों को इस जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: गणपति बप्पा।
2: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए, गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।
3: आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अब पेश है फिल्म संगीत और पहला गीत आइए सुनते हैं जाने मन फिल्म से सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजों में, गीतकार गुलजार और संगीतकार अनु मलिक।

फिल्म संगीत का अगला गीत ये सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। ये गीत हमने लिया है फिल्म कुछ ना कहो से। गीत रचना जावेद अख्तर की और धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब एक गीत मेरे यार की शादी है फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है जीत प्रीतम ने।

आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। श्रोताओं, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा प्रोग्राम लम्हे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटल हेल्थ। हेल्थी फूड्स मानसिक सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं, जाने मेंटल हेल्थ के लिए बेस्ट फूड। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका असर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ता है। खाने का असर शारीरिक के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

जी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन एक दूसरे से संबंधित होता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भोजन खाने की जरूरत होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर के विकास, रखरखाव और इम्यून सिस्टम के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य पर भी उतना ध्यान देना चाहिए। आज के समय में हमारे सामने कई ऐसे लोग आते हैं जो फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन में जरूरी समझते हैं। वे स्वास्थ्य शरीर को बनाए रखने के लिए हर रोज व्यायाम करते हैं, लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधी का उनके पता नहीं। रिपीट, कट एंड रिपीट द होल पॉइंट। लेकिन स्वस्थ आहार और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध का उनको पता नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य को शामिल किए बिना शरीर की फिटनेस नहीं हो सकती है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी फूड्स और डाइट मानसिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़े होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। जब हम अच्छा खाते हैं तो उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं जो हमारे शरीर को रोग से लड़ने में मदद करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, मिनरल्स, अल्फा लिनोलिक एसिड और विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। विटामिन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। फ्रूट जैसे बेरीज और जामुनों का सेवन हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद हो सकता है। बेरीज और जामुन दिमाग की काम करने की शक्ति को बढ़ाने में मददगार हो सकता है। शोध के मुताबिक जो लोग हर रोज फ्रूट खाते हैं उनमें मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बहुत से फलों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट से हमारा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। अखरोट यानी वॉलनट में फैटी फिश की तरह ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बादाम में विटामिन ई भी पाया जाता है जो हमारी याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक और भावनात्मक हेल्थ की बात करें तो भोजन सबसे अधिक अंधे की पहलुओं में से एक है। लेकिन सच्चाई यह है कि हेल्थी डाइट के बिना आप अपने शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते हैं। भोजन शरीर को विटामिन, मिनरल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन आदि जैसे हेल्थी पोषक तत्व प्रदान करता है जो ठीक से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कई शोध से ये बात साबित हुई है कि एक पौष्टिक आहार से कई तरीकों से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। फ्रूट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव और शरीर की सूजन से लड़ने वाले सुपर पोषक तत्व है। ये ताजे और कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियों में पाई जाती है जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरीज, नट्स एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, डू यू नो गट इज अ सेकेंड ब्रेन। पेट को बॉडी के दूसरा ब्रेन के रूप में जाना जाता है। इसका नेटवर्क और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एक हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखने में हेल्प करता है। मजबूत इम्यूनिटी के निर्माण और ब्रेन को बॉडी की जरूरत का संकेत भोजन के रूप में काम करने के लिए संकेत भेजता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही, केफिर, कम्बुचा, किमची आदि अच्छे बैक्टीरिया है जो डाइजेशन, आंतों को साफ करना और पेट को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी आंत स्वस्थ होती है तो ब्रेन को विश्राम, निराश और खुश होने के संकेत मिलते हैं। यह बॉडी की सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत भी करता है। एक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए भोजन मानसिक हेल्थ को बढ़ाए देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। भोजन में पोषण से ब्रेन को जरूरी ईंधन मिलता है और प्रभावी रूप से और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ब्रेन के अनुकूल डाइट लें। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी को ये जरूर कहा होगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? अक्सर लोग ऐसी बात को बहुत हल्के में

कह देते हैं, लेकिन ये महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से ये मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दे को लेकर थोड़ी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अभी भी इन चीज़ों की कई लोग ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ऐसे में हम आपके लिए दिमाग को हेल्थी और बीमारियों से दूर रखने के उपाय बता रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होते हैं। ये प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भी निर्धारित करने में मदद करता है कि एक तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरे को प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं और चुनाव करते हैं। बचपन और किशोरावस्था से वयस्कता तक जीवन का हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दोस्तों, विटामिन बी बहुत जरूरी है। ये 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फोलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्रों को समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। पिछले एक दशक के डेटा पर ध्यान दिया जाए तो इससे पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं का जोखिम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बच्चे और युवाओं में भी इसका खतरा बढ़ रहा है। मनोरोग विशेषज्ञ का कहना है कि महामारी के बाद से जिस तरह से लोगों में चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम देखा जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर का कल्पना नहीं की जा सकता है। तो दोस्तों, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे चेतन के साथ। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

शाम सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक बार फिर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच के बल पर उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं श्री जगदीप सिंह जी की, जो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ नए विचारों, सकारात्मक सोच और निरंतर सीखने में विश्वास रखने वाली शख्सियत हैं। इन्होंने अपने व्यवसायिक सफर में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें अवसरों में बदलने का प्रयास किया है। जगदीप सिंह जी की कार्यशैली में मेहनत, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जगदीप सिंह जी एक सच्चे देशभक्त हैं। आपकी जिंदगी का सफर उन युवाओं के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को व्यवसाय और नवाचार के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। जगदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत

0: स्वागत है शाम सुहानी कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रमेश कपूर जी, आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज्ड टू बी हियर विद यू और ये एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए।
0: जगदीप सिंह जी, इससे पहले कि हम आपकी जिंदगी के सफर की कहानी आगे बढ़ाएं, आपकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के अंश जो पिछले प्रोग्राम में आपने हमारे साथ शेयर की थी वो हम उन श्रोताओं को सुनवा दें जो किसी कारणवश हमारा पिछला कार्यक्रम नहीं सुन पाए, उनके लिए एक रीकैप।
1: मेरे ना फादर और मदर दोनों दिल्ली में, दे वर वेल सेटल्ड। ये 60 में इनका मैरिज हुआ, 1960 में। माय फादर वाज एन इंजीनियर इन CPWD, मदर वहीं पे, मेरे मदर पढ़े लिखे थे, BA/BEd थे। उन दिनों में काफ़ी कम लोग होते थे जो ग्रेजुएट के साथ BEd होते थे। तो इन दोनों की लाइफ वाज एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। तो मेरा 61 में बर्थ हुआ, तो 10 जनवरी 1963 को माई मदर वॉज वेटिंग फॉर माई फादर टू बी बैक। He was 28 years old, तो उनका स्कूटर स्किड कर गया एंड वहीं पे ब्रेन हेमरेज हो गया एंड ही एक्सपायर्ड। तो सारी दुनिया हमारी वहीं से चेंज हो गई। मैं तो माँ की गोद में था, तो 26 साल की लेडी, उसके लिए तो जिंदगी बिल्कुल ही, और देन काफी एकदम से अनहोनी जो होती, इससे कुछ भी भगवान की यही इच्छा थी उस टाइम। तो कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस टाइम आपके अपने पराये सब पता चलने शुरू होते हैं। तो मेरी नानी यहाँ पे पार्टीशन के बाद में, क्योंकि पहले तो वो उधर रावलपिंडी से थे, पार्टीशन के बाद में शी वाज आल्सो एजुकेटेड, वो लाहौर कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो वो फगवाड़ा में एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, वेरी रिनाउंड टीचर, बीबी आतम कौर जी फगवाड़ा में। अब तो खैर हम लोग तो उनका नाम देके अभी भी इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि अभी तो उनको गुजरे हुए भी 50 साल हो गए, इतने रिनाउंड टीचर थे, उन्होंने कई लोगों के कैरियर बनाए थे। तो उस टाइम मेरी माँ का तो सहारा उनकी माँ थी, तो शी ब्रॉट अस टू फगवाड़ा। उसके बाद में देखिए जब आती है ना, तो 4 महीने बाद 1 जून को, 10 जनवरी को मेरे फादर की डेथ होती है, 1 जून को मेरी बहन पैदा हो जाती है। तो 2 बच्चे, देन नेचुरली टीचर की सैलरीज इतनी होती है, तो माई नानी वाज स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, तो एकदम से सारी दुनिया मेरी माँ की बदल गई। तो बट यहाँ पे पढ़े लिखे होने के कारण इनको सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। बट देखिए क्या होता है कि जब चैलेंज आते कैसे आते हैं, उसका एक था कि भी आपने 21 दिन में जॉब ज्वाइन करना है। तो फिर माई मदर छोटी बेबी थी, तो मेरी मदर ने जॉब ज्वाइन किया, तो ये चैलेंजेस हुए। बट एक चीज बताओ, मेरी नानी का अभी भी मेरे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस है, दाओशी पास्ड अवे इन 76, 15 साल उनके इन्फ्लुएंस में मैं रहा हूँ। उन्होंने हमें वैल्यू सिस्टम इतना बढ़िया दिया है, डिसिप्लिन उन्होंने नंबर 1, 4 बजे उठने की आदत मेरे को आज भी है, उठ के भगवान की पूजा करनी, बाबा जी का प्रकाश करना। वो जब मैं 4थी 5वीं में था तो उन्होंने गुरु की चरणी हमें, बाबा जी के, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ है, अभी भी है, तो उन्होंने हमें बाबा जी के पास जोड़ दिया। तो सारा एक वैल्यू सिस्टम मेरी नानी ने हमें डेवलप करना शुरू किया। मैंने मैट्रिक किया फगवाड़ा में, देन आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर लाइक माय फादर। बट उस टाइम क्या होता था, पूरे पंजाब में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, तो परसेंटेज यूज्ड टू बी वेरी हाई, आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट। कोशिश करते थे मेरे नानी जी सभी ने। देन मैंने +1 फिजिक केमिस्ट्री मैथ में किया, प्री इंजीनियरिंग आल्सो रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा से किया। देन प्री इंजीनियरिंग के बाद में, क्योंकि नंबर नहीं बने, तो माई फैमिली डिसाइडेड कि मैं जलंधर जाके थोड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा, देन BSc आई डिड फ्रॉम खालसा कॉलेज जलंधर। तो उसके बाद में सिंस फिजिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था मेरा, तो घर में सिंस एक चीज मैं ऐड करनी चाहूंगा, माई मदर वॉज अ वेरी गुड इंग्लिश टीचर। एक तो घर में अंग्रेजी का माहौल था, मेरी माँ तो चलती फिरती डिक्शनरी थी, जब भी कोई वर्ड पूछना होता था तो मैं माँ से पूछ लेता था, शी यूज टू गिव टेल मी। तो जब BSc करके निकला, सिंस केमिस्ट्री बैकग्राउंड होने के कारण मेरा एक दोस्त था, ही वॉज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ही ऑल्सो लॉस्ट हिज फादर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो उसने कहा यार इधर ही आ जा, तू ये वाली लाइन पकड़ ले। पहले आई ट्राइड एज, मैं आपको बता रहा था, फौजी बनना चाहता था तो नहीं बना, तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थिंग्स। तो फिर मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में, डच मल्टीनेशनल में, 21 साल की उम्र में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो फिर मैं कोलकाता में मेरा ट्रेनिंग हुआ, तो वहां पे भी एक कंडीशन थी, चैलेंज था, क्योंकि ये चैलेंजेस तो लेके चल नहीं पड़ते। उन्होंने कहा कि जी हमने 8 बंदे लिए, 8 में से हम 4 निकाल देंगे, 4 रखेंगे, हमारा एवरी वीकेंड इट देयर यूज्ड टू बी अ टेस्ट, वो समहाउ निकल गए, हम मैंने कर लिया। तो देन आई जॉइंड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट बटिंडा हेडक्वार्टर।

0: 1982। तो देन मदर वॉज अलोन इन फगवाड़ा, तो फिर मैंने फगवाड़ा के लिए नियर बाय जलंधर ही पढ़ता था, तो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की सिंस लुकिंग इनटू माय गुड वर्क, तो उन्होंने मेरे को जलंधर भेज दिया। मैंने वो ऑलमोस्ट 23 साल उस कंपनी में काम किया, तो एक सैचुरेशन आ गया। आई वॉज नॉट इंजॉइंग वट एवर आई वॉज डूइंग, दाओ मेरे को सैलरीज आ रही थी, आई वॉज बींग रिकोगनाइज। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन भेजा, हमारा 3 महीने का नोटिस पीरियड था, तो माई रीजनल मैनेजर एम्फेसाइज की डोंट लीव, सिंस आई डिसाइडेड आई वॉज फर्म ऑन इट की यार जो भी होगा, माई मदर एंड माई वाइफ ये दोनों मेरे लिए पिल्लर ऑफ सपोर्ट थे। मेरी बीवी ने भी कहा कोई नहीं हम गुजारा कर लेंगे, तू अब शुरू कर। तो ये दोनों लेडीज की मेरे को इतनी बड़ी सपोर्ट मिली। कपूर साहब एक चीज बोलूं, ये जो नौकरी वाले से जब आप बिजनेस पे जाते हो, आपके फोकस तो बहुत बड़ा चाहिए होता है। इतनी परेशानी कहाँ पे, मल्टीनेशनल में एरिया मैनेजर ही करते हुए आपको फोन चुप नहीं होते, क्योंकि आप ब्रांच भी हैंडल कर रहे हो, कई कुछ हैंडल कर रहे हो, तो वो एक रुतबा होता है। तो एकदम से जब आपने अपना काम शुरू किया तो आप तो स्ट्रगल चालू हो गया दोबारा, जो आपने 82 में देखा उससे भी बदतर स्ट्रगल चालू। छोटी कंपनी का फ्रेंचाइज लिया था तो वो लेके शुरू हो गया, तो वो एक साल जो मैंने निकाला है, मैं धर्मशाला में भी निकला हूँ, पैसेंजर ट्रेन में भी गया हूँ, काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, ताकि भी मेरी फैमिली को ये ना लगे कि भाई ये बंदा ने नौकरी छोड़ दी और हमें भूखे मार रहा है। तो इतनी मेहनत की, सब कुछ हुआ, भगवान, मैं ना ट्रेवल जब करता था, आस्था है भगवान में, हाथ में सुखमनी साहब का एक गुटका होता था, दो पाठ कर लेता था, इतनी बल मिलता था उससे, इतना बल मिलता था, और भगवान कब अपने मेरे कार्य सारे सीधे कर रहा था मेरे को कुछ नहीं पता चला। एक साल के बाद में वट एवर आई वॉज अर्निंग फ्रॉम दैट मल्टीनेशनल कंपनी, उससे 2 गुना पैसा कमाना शुरू कर लिया मैंने। तो फिर क्या हुआ, जैसे भगवान आपको टेस्ट करता है ना, 2006 में मेरी मदर को कैंसर हुआ, वो चल बसे। वो जैसे ना कोई होता है कि कुछ लेडीज होती है या देवी होती है, वो आपकी सेवा करने के लिए ही आती है। आई थिंक दैट लेडी वाज जस्ट केम हियर टू कि मेरे की सेवा, हमारे बच्चे पालगी और कुछ नहीं। उस टाइम तो मैं सेटल होना शुरू हो गया, पैसे बिजनेस में थोड़े हो ही जाते हैं कि चल भाई उसको जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो शी पास्ड अवे 17 जुलाई 2006। फिर मेरे लिए मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ वॉज माई वाइफ। मैं ब्रोक हो गया था, मम्मा चले गए तो टूट गया था, फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बढ़ाया। अभी ये चल ही रहा था, 23 जुलाई को आई मेट विद अ नियर फेटल एक्सीडेंट। मेरा सारा राइट साइड क्रश हो गया, टांग टूट गई, बाजू टूट गई, कई कुछ हुआ मेरे को। आई वॉज बेड रिडन फॉर 2 ईयर्स। इसमें मेरी बीवी मेरे बच्चों ने इतना साथ दिया, बस पूछो कुछ ना, क्योंकि वो मेरा घर संभालने वाली मेरी बीवी थी, वो उसने भी मेरा कहा उस टाइम एक्सीडेंट तो मेरा हुआ पर भुगता उसने, फिर क्योंकि बिल बनाने होते थे, फिर वो बिजनेस को भी संभालना सारा कुछ। मैंने तो इंस्ट्रक्शन लेटे लेटे, मैं तो पासा एक तरफ सो भी नहीं पाता था, रात को कई बार होता क्योंकि सारा कुछ टूटा हुआ था मेरा, तो मैं कई बार हंसता हूँ कि मेरा जितना भी स्केल्टन था टूट गया था। तो फिर मेरी बीवी वाज अ बिग सपोर्ट।
1: जी, जब परिवार आपके साथ होता है, आपके दोस्त आपके साथ होते हैं, तो मुसीबत चाहे हजार आए, आप हर मुसीबत को बौना साबित कर देते हैं, और वो आपने करके दिखाया।
0: यस, भगवान का भी बहुत साथ है। ये जब मैंने जॉब छोड़ने का आया, एक तो सैचुरेशन था मेरा, एक आई यूज टू ट्रेवल टू श्रीनगर, तो श्रीनगर उस टाइम पीक टेररिज्म था, तो जब उस टाइम 2 फ्लाइट्स ही चलती थी, तो मेरी मदर पीछे पाठ करती रहती थी, तो मेरे को कहती बेटा तू जाता है तो पीछे, मेरा पंजाबी में बोलती थी सासु कह रहा था, कैन यू डू समथिंग एल्स और यू कैन रिक्वेस्ट टू योर कंपनी कि भाई आप श्रीनगर कह रहे हैं, मदर आई कैन नॉट बैक ड्रॉप फ्रॉम देयर, तो कहती कुछ और कर ले फिर। देन एक प्रेशर वो भी आ गया था, तो वो सारा कुछ मिलने के बाद में देन आई स्टार्टेड, शी आल्सो एनकरेज्ड, देन माय वाइफ आल्सो स्टूड बाय मी, क्योंकि उसका देखिए अभी 41 साल हो गए मेरी मैरिज को भी, शी इज ऑलवेज अ पिलर टू मी अलोंग विद माय मदर। मेरे को ये 3 लेडीज ने बहुत उबारा है, क्योंकि ये 3 लेडीज का बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी जिंदगी में। तो बस उस टाइम फिर ये सारा कुछ मिलके देन आई स्टार्टेड, फिर मेरा फोकस वाज वेरी हाई। फोकस कैसे हाई होता है कि भगवान ही आपको बताता है कि भाई हाई कर ले इसको, तभी तेरा गुजारा होगा, ये सारा भगवान का किया होता है मेरे, मैं तो ये मानू।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, जब हम लोग किसी चीज को ठान लेते हैं या हम लोग जब मेहनत करते हैं,
0: कायनात आपके साथ चलती है,
1: तो हमेशा कायनात आपका साथ देती है वो चीज हासिल करने के लिए। तो जगदीप सिंह जी, जैसे आप बता रहे हैं कि उसके बाद आपने अपनी कंपनी शुरू की,
0: एक कंपनी का मैंने फ्रेंचाइज लिया था।
1: शुरुआत में क्या काम करते थे आप?
0: मैंने देखिए मेरे को तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेलिंग का ही पता था, तो मैंने शुरू से फिर बैग उठा लिया, मैं लोगों के डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, साइकेट्री।

0: फील्ड में, तो मैंने जीरो से शुरू किया दोबारा आफ्टर 23 इयर्स आफ्टर सर्विंग इन मल्टीनेशनल। तो मैं डॉक्टरों के साथ अपना रैपो बनाना शुरू किया, मैं उनके पास जाता था, रेगुलरिटी के साथ काम करना शुरू किया। तो फिर यही होता था कि मैं उस फ्रेंचाइज वाली कंपनी से माल लेता था, तो वो मेरे होलसेल लाइसेंस लिया हुआ था, तो उसमें मेरे को गुड्स आ जाते थे, मैं आगे लोगों को, डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, रिटेलर्स को करता था, स्टॉकिस्ट बनाए हुए थे वो, मैं उस हिसाब से। तो मैं उसकी 20 लाख रुपए महीने की सेल ले गया था, ऑलमोस्ट जब मैंने शुरू किया था 50-60 हज़ार रुपए की सेल थी। तो वो मेहनत के कारण डॉक्टर्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। कुछ डॉक्टर्स तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस टाइम असली पहचान हुई, उस टाइम डॉक्टर्स मेरे को घर आके पेमेंट दे जाते थे, कहते थे यार तेरी तबीयत खराब है तू, अब तेरे साथ हम खड़े हैं। और वाकई वो खड़े रहे, काफी डॉक्टर थे होशियारपुर में, डॉक्टर रविंदर पटियाला में, ये सारे लोग मेरे साथ ऐसे खड़े हो गए। एक डॉक्टर सुविंदर है आजकल डायरेक्टर है, तो मेरे को इतनी हेल्प हुई उनकी, मैं आज भी आई एम इंडेप्टेड टू देम। क्योंकि देखिए आपकी मुश्किल में जो आपके साथ खड़ा वो तो आपकी सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। तो फिर मैंने आई कुड कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा।
1: जगदीप सिंह जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहां पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: सर वो ना तीसरा पिलर, जैसे मैंने अपने वाइफ का, जैसे मैं कल आपका पॉडकास्ट भी एक देख रहा था कुलवीर कपूर जी के साथ, तो वो तीसरा पिलर मेरी जिंदगी में मेरी मदर के जाने के बाद में तो बहुत ज्यादा हुआ, बट वो तीसरा पिलर मेरी वाइफ है, हर नेम इज देवेंद्र कौर, हम प्यार से उसको दमी बोलते हैं। जब मेरी उसके साथ एंगेजमेंट हुई ना, तो देखिए इंसिडेंटली राजेश खन्ना का एक फिल्म थी सौतन दाओ, ये सौतन वाला काम नहीं है, बट एक गाना बहुत मशहूर था और मेरी उसके साथ एंगेजमेंट के साथ कोइंसाइड किया। शायद मेरी शादी का ख्याल मन में आया है इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया। उसी टाइम ना, कैन यू इमेजिन, मैं जब हमारी एंगेजमेंट होनी थी, अरदास होनी थी, तो मैं रिक्शा पे बैठ, उस टाइम तो कहां गाड़ियां वाड़ियां थी, रिक्शा पे बैठ के इनके घर की तरफ जा रहा था, साथ में मेरी मदर थे, तो ये गाना बज रहा था, तो मैं कह लै माँ ये भी बज रहा है ये गाना तो
1: अच्छा, वो याद ताजा करना चाहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल जी, तो वो तो अभी भी जब आता है तो मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ, मैं ये गाना बजा था जब मैं तेरे को अरदास करने के लिए गया था।
1: चलिए आपकी वो याद ताजा कर देते हैं हम लोग, आइए सुनते हैं सौतन फिल्म का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे हम सफर हैं श्री जगदीप सिंह, जो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ बहुत से लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। जगदीप सिंह जी, बात हो रही थी आपकी शादी की, आपकी एंगेजमेंट की, तो थोड़ा और बताइए आपकी शादी कैसे हुई, किन हालात में हुई?
1: सर, क्या होता है कि वो जैसे होते ना घर में मामी चाची ये सारे लोग, मैं स्टडिंग मेरा कल बीएससी में था, तो मेरी मामी ने बोलना शुरू कर दिया इनकी वो कजन है, सगे मामा जी की बेटी है, तो उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया। तो हम लोग एक फोकस ही थे कि यार हमने शादी करनी तो यही करेंगे, तो वो एक जैसे होता ना ऑब्सेशन हो जाता है, फिर वो ऑब्सेशन किया तो जब समझ ही नहीं आया उसी के साथ एंगेजमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया।
0: शादी से पहले भी मिले थे?
1: हाँ, मैं मिलता रहता था, कभी मोटरसाइकिल मामा जी का उठा के कई बार इनके घर के आगे चक्कर भी लगाता था होता था
0: तो घर वालों से चोरी, नानी से चोरी या माँ से चोरी?
1: नहीं, नानी जी तो गुजर गए थे ना।
0: अच्छा।
1: बस वो मतलब होता था, एक माइंड में था, ऑब्सेस्ड था, तो वो फिर कहते इसमें भी कायनात साथ में चल पड़ी, बाबा जी कहते आ जा भाई
0: जगदीप सिंह जी, आज आप एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं और बहुत से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो जिंदगी के इस पड़ाव पर किस तरह से आप देखते हैं जिंदगी को?
1: एक चीज है, मैं अभी जो बोलूंगा, नेक्स्ट जनरेशन अगर आपके साथ है तो यू कैन डू एनीथिंग। ये 2012 में मेरा बेटा 3 साल, क्योंकि वो तो परमानेंट रेजिडेंट था, आई थॉट कि यार ये बंदा वहीं पे सेटल हो जाएगा कनाडा, वही होता ना जैसे हम पंजाबियों को होता है, चल यार कनाडा मींस कि सेटल हो गया, चाहे वहां पे क्या कर रहा है कनाडा मींस सेटल हो गया। तो एक दिन मेरे को कहता है यार डैड आई वॉन्ट टू कम बैक, आपका बिजनेस ज्वाइन करूंगा। दिल में थोड़ा अच्छा तो लगा कि यार मैं अकेला यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अकेला काम कर रहा था, मेरे लिए जितने दाने बन रहे थे मेरे लिए बहुत थे, मैं खुश था उसमें। तो देन ही सेड, मैं कह यार अभी क्यों, मैं कह तू तो सेटल हो रहा है वहां पे। कहता डैड यार आई वॉज इंटरव्यूइंग, एक बंदे का कर रहा था, घोरा था, तो वो मेरे को कहता कि व्हाट आर यू डूइंग इन कनाडा, गो बैक टू योर कंट्री, इट्स बूमिंग, तो वहां पे जाके तेरे को काफी जाके एक्सप्लोर कर। तो कहता यार मेरे दिमाग में वो बैठ गया, तो मेरे लिए

0: कि आप बिजनेस कर रहे हो तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू। मैं कहा बेटा बाप के साथ बिजनेस करना नाको चने चुबाने वाली बात है, सोच ले पहले। मैं क्या यहाँ पे कोई फ्रीबी तो दूंगा नहीं तेरे को, तो काम करना पड़ेगा जम के। कहता डैड आई हैव प्रिपेयर्ड माय माइंड। 12 जून को वो आया, मैंने 13 जून को उसको फील्ड में भेज दिया। मैं उठा बैग चल, कहता यार एक दिन रेस्ट। मैं कहता नो नथिंग डूइंग। तो ही वेंट टू द फील्ड, फ्रस्ट्रेट हुआ, काफी कुछ परेशान होने लगा। बीच में मेरे को कहता कह डैड यार एम आई योर रियल सन, कि तू इतना हिटलर है यार, क्यों ऐसे करता मेरे साथ। तो मैं जवाब नहीं देता था उसको, मेरे को पता था यार अभी इसको फ्री भी दे दी ना मैं कमाने लग गया तो सारी जिंदगी वो गलत ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो मेरे से ना परेशान होके उसने बीच में क्या किया, पहले इन बिटवीन वो जाके डिफरेंट एक मॉड्यूल देखने लगा, उस पर उसने ट्राई किया। अपनी मदर को बोल के मेरे से उसने कुछ पोर्टल लिया, कुछ ऐसे कर करा के एक ऑफिस डिफरेंट लिया, वो मैंने सब कुछ इसको सपोर्ट करता रहा। तो देन परेशान हो गया मेरे से, देन इसने टेरिटोरियल आर्मी का एसएसबी क्लियर कर लिया, तो ये लेफ्टिनेंट बन गया उधर। बट इसका सिंस कनाडा वाला वो था, तो कनाडा से उसका उधर से आना था क्लियरेंस, वो इसका लेट हो गया। देन इसके बेटी हुई, तो फिर ये बिजनेस भी चलना शुरू हो गया। हम दोनों बाप बेटा ने मिलके किया। मैं तो इसको मेंटोरिंग कर रहा था, बट इसकी क्रिएटिविटी इसकी थी, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से ये कर रहा था। तो मेरे लिए तो अंदर से तो लड्डू फूट ही रहे थे कि यार ये बच्चा अब ठीक हो रहा है। जब इसका वो वहां से क्लियरेंस आया, तब तक ये बिजनेस में सेटल हो चुका था, तो ही वॉज अनेबल टू ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी। तो देन बिजनेस में हमने दोनों ने मिलके इकट्ठा किया, बट मेजर ही वाज डूइंग, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत है। मैं थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाता हूँ कई बार, वो इतना कुछ जिंदगी में होने के कारण ना थोड़ा सा एंग्जाइटी में आ जाता था। एंग्जाइटी भी यही होती थी, औलाद के लिए होती थी, बेटे के लिए होती थी कि यार इसका कुछ गलत ना हो जाए। उसके बाद में फिर हमने फैक्ट्री बनाई, उसमें भी चैलेंजेस आए, जम के चैलेंजेस आए। पहले जहाँ पे मेरे पास कोई पैकर भी एक होता था, पार्ट टाइम होता था, अभी टचवुड हमारे पास 70-80 लोग हैं ऑफिस में। फिर फैक्ट्री में चैलेंजेस आए, देन वी वांट टू गिव क्वालिटी टू द पीपल। अभी हमारा क्या है कि इंडिया की टॉप टॉप कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है, और उनसे हम माल बनाते हैं। हम सिर्फ जो भी हमारी हेल्थ केयर है उसको सस्ती और बढ़िया दवाई देनी चाह रहे हैं, और हम अपने उस मिशन में लगे हुए हैं। और जब आपका मिशन ठीक हो, भगवान जी भी आपका साथ देते हैं। बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे अनफोर्सीन चैलेंजेस आते हैं। तो बट वो साथ में एक वो बाबा जी भी कहते हैं यार मैं साथ में हूं ना तेरे, ले ले चैलेंज। कहते भगवान भी चैलेंज उसको ही देता है जो संभाल सकता है। तो वो करके अभी जर्नी चल रही है, बेटा भी ही इज डूइंग वंडरफुली वेल, तो वो अपना मेहनत कर रहा है। बट हमारे साथ अभी भी एक चीज है, जैसे मैं साइकिल पे चलता था वही एटीट्यूड अब भी आप बोलोगे यार बस में जाके, लोकल बस में जाके अपने घर पहुंच जाऊंगा, ये अभी भी हमारा दिमाग में यही रहता है कि यार पांव जमीन पे रख के जो हमें शिक्षा मिली है ना, जिन्नी चादर देखो उन्ना पसारो पैर पसारो वाला साहब।
1: तो जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई और आपकी तमन्ना जो आप पूरी करना चाहते हो?
0: सर ये जो नई जनरेशन है ना, ये जो हमने सीखा ना, इसको परकुलेट डाउन करना चाहूंगा, ताकि किसी का, अगर मैं दो बंदों का भी जिंदगी में भला कर जाऊं, अभी 65 हूं, जितनी भी जिंदगी लिखी है। अब देखिए मैं बीच में आपको ये नहीं बता रहा था, अभी आई डू योगा, आई डू बिल्कुल टी टोटलर हूं, सारा कुछ है कि मैंने दूसरा साइड भी देखा है, बट ये जो लाइफ डिसिप्लिन वाली मैंने देखी है, मैं ये परकुलेट करना चाहता हूँ कि जेंजीज को या किसी को भी, अगर हमारी इस जर्नी के साथ किसी का कुछ भला हो जाए तो आई थिंक आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। मेरा अभी एक ही मिशन है, देखिए अभी जो भगवान ने दिया है वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा दे दिया। जो भगवान ने दिया इतना तो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। गॉड इज काइंड इनफ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आगे थोड़ा सा क्या होता है कि हम बच्चों को समझाने का तरीका शायद कुछ लोगों को टफ लगता हो, बट जैसे हमने सीखा, आपने भी उन स्कूलों में पढ़े होंगे जहाँ पे वो छड़ी पड़ती थी, हमने
1: भी बहुत मार खाई,
0: हमने भी मुर्गा भी बने हुए हैं, हमारी मुर्गे के ऊपर बंदा भी हमें बटा देते थे, बच्चा भी बटा देते।
1: जी तो जगदीप सिंह जी, क्योंकि आज हमारे बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो वो श्रोता जो आपके हम उम्र हैं, उनको जिंदगी को किस तरह से जीना है, खासतौर पर जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर, और अपने आप को किस तरह से फिट रखना है, क्या कहना चाहेंगे?
0: सर, मैं नोबडी, क्योंकि बहुत हमारी जनरेशन के लोग तो सारे ही टैलेंटेड, क्योंकि सभी ने जिंदगियां देखी हुई है, बट जो मैंने अपनी जिंदगी से कुछ जो सीखा है कि डिसिप्लिन लाइफ तो बहुत फर्क पड़ती है। मैं अभी अपनी एक्सरसाइज, जैसे

0: अब भी वेट लिफ्टर रहे हो, मैंने भी वेट लिफ्टिंग बहुत की है, हम भी बेंच प्रेस लगाते थे तो चक दे शेरा होती थी, तो ये सारी चीजें होती थी। अभी एज के साथ, क्योंकि मेरे हाथों में भी रॉड पड़ी हुई है तो सारा कुछ है, अब वेट तो नहीं इतने उठा सकते, बट मैंने योगा पिकअप किया और योगा से बहुत हेल्प हो रही है, माइंड भी सटल हो रहा है, आप इंसान की तरह थोड़ा होते हो। अगर इस उम्र में थोड़ा सा हम लोग इस तरफ देखेंगे तो डॉक्टरों के पास जाने के हमारे चक्कर कम हो जाएंगे। तो यही है, खाना पीना थोड़ा ठीक रखें। 7 बजे वो जो पुराने हमारे लोगों ने किया था ना, वो मूंगी दी दाल ते चटनी, वो सात्विक भोजन अभी भी मेरे को तो अच्छा लगता है कि वो डाइट और एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं, 1+2। बाकी पॉजिटिव अगर है, पॉजिटिविटी तो बहुत जरूरी चाहिए सर, बहुत जरूरी चाहिए आपको। अगर कितना भी होता है, मैंने एक चीज देखी सर, कई बार कोई ऐसा सर्कमस्टांस आता है कि आपके ऊपर सारी तरफ से हमले हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 घंटे सो जाता हूँ, क्योंकि आप कर तो कुछ सकते नहीं, हमले हो रहे हैं आपके ऊपर, इधर से ये हो गया, इधर से वो हो गया, तो जब आप सो जाते हो ना तो आपको हमले से लड़ने के प्लस हमले की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है।
1: जी, वो कहते हैं ना कि जब बमबारी हो रही हो तो थोड़ी देर बंकर में
0: थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ,
1: जब दुश्मन के गोले खत्म हो जाए तो फिर अपना अपना काम,
0: दिव्य अस्त्र निकालो। यस, दैट इज ट्रू। तो या पॉजिटिविटी एट एनी पॉइंट, क्योंकि ये मैंने अपनी माँ से, नानी से सीखा, क्योंकि इतने कुछ हालात होने के कारण अगर आज हम इस लेवल पे खड़े हैं तो ये उनकी पॉजिटिविटी की देन है। उस टाइम अगर मेरी नानी नहीं संभालती मेरी माँ को, या मेरी माँ, देखिए शी वॉज 26 years old, बड़े उनको रिश्ते भी आते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए तो हस्बैंड मिल जाएगा बट इनका दूसरा बाप इनको क्या संभालेगा, तो उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ हमें खड़ा कर दिया।
1: सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके साथ माँ का आशीर्वाद होता है, माँ जिसके साथ होती है, वो इंसान जिंदगी में सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता।
0: सर ये चीज तो 100% है। मैं कई बार सोचता हूँ, कई बार मेरे को कोई सक्सेस मिल जाती है तो मैं सोचता हूँ यार ये मैं तो डिजर्व ही नहीं करता था, पता है कि वो माता जी आशीर्वाद दे रहे हैं।
1: जी
0: यस, दैट इज ट्रू।
1: जगदीप सिंह जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, शाम सुहानी कार्यक्रम में आपने अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू। मैं तो मेशी पाजी के साथ से, रमेश जी एक चीज है, आपके साथ मिलना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, क्योंकि हमने तो बहुत आपको सुना है। मैं तो जब ट्रेवल भी करता था तो 107.2 ही, पहले 103.1 में भी होते थे आप मेरे का, ये सारी चीजों पे भी मैंने, हम लोग तो आपको बहुत एडमायर करते हैं।
1: जी, मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और आप हमारे पुराने लिसनर भी हैं।
0: नहीं, सर,
1: आप रेडियो सुनते हैं।
0: वी आर लिव्ड विद यू, मैडम कुलवीर के साथ भी, वो भी बोलते थे उस टाइम, तो ये सारे हमने 107.2 तो हमारी लाइफ है।
1: जी जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए।
0: थैंक यू सो वेरी मच सर।
1: दोस्तों, आज शाम सुहानी कार्यक्रम में हमारे हम सफर थे श्री जगदीप सिंह, जो एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बाबा ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोध संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबाइनिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हुए हैं। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देशभर में 1100 यूक्रेन के ड्रोन मार गिराया है। नेपाल में करीब 4 हफ्ते पहले अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस आपदा में अब तक 1400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 6000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। अन्य खेलों में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की। पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 और महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.1

0: जाती।
1: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
2: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
3: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
2: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं। माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
3: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
2: अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अब आप माई वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी।
4: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
5: गणपति बप्पा।
6: बप्पा नू पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता। इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध, दही, देसी घ्यो ते पनीर। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।
7: अरोड़ा प्लाईवुड,
8: यहाँ है PVC, WPC, वॉल पैनल्स, सीलिंग्स, एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग और HDHMR प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, सब एक ही छत के नीचे।
7: घर के परफेक्ट मेकओवर के लिए विजिट करें अरोड़ा प्लाईवुड एट SU 845, NAC मनी माजरा, चंडीगढ़। कॉल 9876277700।
9: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सब्सिडी वाले गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। योजना के विस्तार के बाद आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खोला गया। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में युवाओं ने नशों से दूर रहने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प किया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के गांव बावनी खेड़ा में नमो क्रिकेट लीग प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। और हरियाणा में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जींद, तिगांव सहित विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से

बावनी खेड़ा में नमो क्रिकेट लीग प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। और हरियाणा में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जींद, तिगांव सहित विभिन्न जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए पहली अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नवंबर के महीने में 1,80,000 रुपए तक की आय वाली पात्र महिलाओं को लाडो लक्ष्मी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा विधानसभा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में कहा कि अब तक 1,00,000 रुपए वार्षिक आय तक वाले परिवार इस योजना के पात्र थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि विस्तार के बाद आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया है और पात्र महिलाओं को 1 नवंबर के दिन योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने को लेकर कहा कि सरकार ने पिछले 12 साल में प्रदेश के 2,00,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। इस दौरान गांव कालीरानों में उन्होंने गांव के विकास के लिए 21,00,000 रुपए और पुस्तकालय की किताबों के लिए 2,00,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव सुल्तानपुर में 21,00,000 रुपए गांव के विकास के लिए और 5,00,000 रुपए गुरुद्वारा साहिब में देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने गांव सोटी, गांव बीड़ सोटी और गांव के गुरुद्वारा साहिब में 21,00,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देश भर में युवा एकजुट हुए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1,067 स्थानों पर आयोजित किया गया। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया गया। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल रहे। चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में नशा मुक्त युवा अभियान समारोह में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने शिरकत की और युवाओं को नशों के विरुद्ध संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। मेरा युवा भारत ने आज चंडीगढ़ के देव समाज महिला कॉलेज में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान नशा मुक्ति शपथ चक्र एवं हस्ताक्षर अभियान में 212 युवाओं ने भाग लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी 100 सप्ताह के विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 212 युवाओं ने सामूहिक रूप से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया तथा अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर किए। चंडीगढ़ के जिला युवा अधिकारी विनय कुमार ने कहा कि 100 सप्ताह लंबा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाला आंदोलन है। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता पैदा करना नहीं बल्कि युवाओं को सशक्त बनाकर नशा मुक्त भारत के सक्रिय दूत के रूप में तैयार करना भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, अपने साथियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने तथा एक स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान युवा संवाद, नारा लेखन तथा अन्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। इन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि जापान में आयोजित हो रही एशियाई खेलों में 80 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से भाग ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि

0: खिलाड़ियों ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा वासियों के लिए ये गर्व की बात है। खेल राज्य मंत्री आज पलवल के गांव बामनीखेड़ा में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित 3 दिवसीय नमो क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। खेल राज्य मंत्री ने आज खुद मैच खेलकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत शुरू की गई नमो क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना है और युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर करना है।
1: नमो क्रिकेट लीग का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खेल हमारे युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगा। यहाँ से सिर्फ खेल से खिलाड़ी ही नहीं, अनुशासन हो, चरित्र हो, नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहने का संकल्प भी आज इस नमो क्रिकेट लीग में दिया है।
0: सेवा संकल्प अभियान के तहत आज जींद के अर्जुन स्टेडियम में नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर लगभग 250 खिलाड़ियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। जिला खेल अधिकारी रामपाल ने युवाओं से नशे से पूरी तरह दूर रहने और खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का सशक्त माध्यम है। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, शारीरिक क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। ऐसे में युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा में शुरू किए गए सेवा संकल्प अभियान के तहत आज तिगांव के एक स्कूल में मेरे सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न आयु वर्गों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रंगों और चित्रों के माध्यम से विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की अपनी कल्पना को प्रकट किया। राज्य मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
2: आज जो मेरे गांव तिगांव में बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन था, मोदी जी के जो एक विजन हमें दिया है 2047 का विकसित भारत, उसके ऊपर और उसमें जो बच्चों ने ड्राइंग की, प्राइज भी उनको दिए गए।
0: आज हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा कुरुक्षेत्र में सीआईडी में तैनात एक इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कुरुक्षेत्र में ब्यूरो के प्रभारी इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि एक शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
3: आज हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी, जो एक हमारा कंप्लेंट था जो कि करनाल से बिलोंग करता था, जिसने ये बताया कि यहाँ एक सरकारी मुलाजिम है जो कि पुलिस विभाग से सीआईडी से बताया गया, जिसका नाम राजेश है, कि वो हमें एक ट्रांसपोर्टर ने बताया कि गाड़ियों को ले जाने के लिए हमारे से मंथली के एवज में मोटे पैसों की मांग कर रहा है, जो कि सुबह अर्ली हमारे पास एक कंप्लेंट लेके पहुंचा, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज करके उसी टाइम रेडिंग पार्टी तैयार करके जो उसकी डिमांड थी 5 लाख रुपए, उस 5 लाख रुपए के साथ उसे सुबह रेड हेडेड उम्र चौक से पकड़ा।
0: अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सब्सिडी वाले गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1 नवंबर को लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। योजना के विस्तार के बाद आवेदन के लिए पोर्टल फिर से खोला गया। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में युवाओं ने नशों से दूर रहने और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: रिंकू जी 100 ग्राम पेड़े दियो।
1: 250 ग्राम तो कट नहीं मिलेगा।
0: ओए क्यों,
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: ओ भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट विच नो मिनिमम बैलेंस, पर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
1: दे भाई,
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण

0: भरपूर प्यार गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे आंगनबाड़ी हमारे जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपने नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी प्रादेशिक खबरों के नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दिया खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज फाजिलका तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब की नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा की शुरुआत की थी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान पलके बठिंडा तो नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे चौथे पड़ा नूं हरी झंडी दे के रवाना करेंगे। सरकार ने 1 अक्टूबर तो सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग वास्ते आधार नाल जुड़ी बायोमैट्रिक प्रमाणिकता लाजमी की थी। बाबा शेख फरीद आगमन पुरब 2026 मौके फरीदकोट विखे पहला पशुधन ते किसान मेला करवाया जा रहा है। औरतों के क्रिकेट विच भारत ने जापान विच एशियाई खेडां दे दूजे सेमीफाइनल विच बांग्लादेश नूं 114 रनां नाल हरा दिता है। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्रीय कानून ते न्याय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अज भारतीय जनता पार्टी पंजाब दी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां दे तीजे पड़ा दी शुरुआत की थी। तीजे पड़ा दी शुरुआत फाजिलका दी सादिकी सरहद तो की थी गई। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदिया श्री मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दा उद्देश पंजाब नूं विकसित पंजाब बनाउणा है। उन्हें कहा कि यह प्रोग्राम पंजाब दी आउंदी पीढ़ी नूं सांभण लई है।
3: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
2: बाद में इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करते हैं मंत्री ने कहा कि इस यात्रा नूं सियासी नजरिए तो नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह समाज सुधार का प्रोग्राम है।
1: आज के कार्यक्रम को भी कुछ लोग राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये राजनीति के चश्मे से देखने वाला कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक सुधार का कार्यक्रम है, पंजाब को बचाने का कार्यक्रम है, पंजाब को विकसित पंजाब बनाने का कार्यक्रम है।
2: पहला केंद्रीय मंत्री ने सूबा भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों और होर पार्टी आगुआ नाल 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के शहीदों को आसफ वाला जंगी यादगार से श्रद्धांजलि भेंट की थी। उन्होंने कुछ नशा प्रभावित परिवारों के मैंबरों नाल भी मुलाकात की थी और उन्होंने दुख साझा किया। बल्कि चौथे पड़ा नूं केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो तो हरी झंडी दे के रवाना करेंगे। यह यात्रा 18 सितंबर नूं सरहदी जिले पठानकोट तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नबीन वालों शुरू की गई सी। यह नशे विरुद्ध लड़ाई नूं एक लोक लहर विच बदलने लई राज के सारे 117 विधानसभा हल्कियां नूं कवर करेगी। सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर तो सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग ले आधार नाल जुड़ा बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण लाजमी होगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि सिर्फ योग परिवारों में ही सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलन। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी योग परिवार को एलपीजी तो वांझा करना नहीं है। जिन्हें ग्राहक ने पहला ही प्रमाणीकरण पूरा कर लिया उन्होंने दोबारा अजिहा करने की जरूरत नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि हरेक कनेक्शन नूं आधार प्रमाणित खपतकार नाल जोड़न नाल व्यापारक अते सनती वरतों लई सबसिडी वाले घरेलू सिलेंडरां दी दुरवरतों नूं रोकण विच मदद मिलेगी। बायोमैट्रिक आधार प्रमाणीकरण सिलेंडर डिलीवरी दे समय डिस्ट्रीब्यूटर दे शोरूम ते जां तेल मार्केटिंग कंपनियां दे मोबाइल एप्स राहीं कीता जा सकदा है। श्रोतों नूं सूचित किया जाता है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर तक पंजाबी खबरों के शाम के राष्ट्रीय बुलेटिन के प्रसारण के समय में तब्दीली की गई है। हुण 16 अक्टूबर तक पंजाबी खबरों का शाम का राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 की बजाय रात 8:30 तो रात 8:40 तक प्रसारित किया जाएगा। यह खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @ AIR जलंधर।

0: संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ के अंदर तो बोल रहे हैं, श्रोतियों समा हो रहा है प्रोग्राम विशेष जयमाला दा। इस प्रोग्राम नु असी आकाशवाणी दे मुंबई केंद्र तो रिले करांगे।

विशेष जयमाला के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अति प्राचीन और गौरवशाली संस्कृति को लिए समस्त आर्यावर्त के चक्रवर्ती महाराज भरत की पुण्य भूमि भारत, जिसके कण कण में विजय की दास्तान लिखी है, वो आज भी बदस्तूर कायम है। प्राचीन काल में विश्व मानचित्र पर अपने लहू से फतेह की अनगिनत दास्तान लिखने वाली सरजमीन हिंदुस्तान के लहू का रंग आज भी लाल है। वक्त की पेशानी पर लिखी फतेह की ये अमर दास्तान चिरकाल से हमारी विरासत है। तारीखें आईं और गईं, जिसने जंग के जाने कितने ही गुबार देखे, सब कुछ बदला, लेकिन दुश्मन पर फतह का सिलसिला बदस्तूर कायम रहा।

और मां भारती का आंचल शान से हवाओं में लहराता रहा। तूफान आते रहे, बादल छटते रहे और इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से हमारे फौजी साथियों के विजय की दास्तान एक के बाद एक दर्ज होती चली गई। घाव सीने पर खाया लेकिन पीठ पर वार न किया। इधर दुश्मनों की नापाक चाल और पीठ पर खंजर भोंक कर धोखा देने की इनकी रवायत न गई। भेड़िए की खाल में छुपे इन मतलब परस्त दुश्मनों की चाल को भी हमारे शेर दिल सैनिकों ने कई बार शिकस्त दी है। और ऐसी ही एक और बाजी पराक्रम से अपने नाम कर चुके कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा है आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में। हम कर्नल बकुमल्ला बी संतोष बाबू को सलाम करते हैं।

कंधों से कंधे मिलते रहे, कदमों से मिले कदम, वही अपलक दुश्मन को निशाना बनाती आंखें और वही जज्बा और जुनून हमारी फौज के रणबांकुरों का रहा।

अध्यात्म और पुरातन संस्कृति से संचित भारत भूमि के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, जिसने सदियों से अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरी है, प्रेम की सरस धाराएं जहां बहती हैं, जिसकी फिजाओं में अमन का पैगाम रहता है और पुरातन संस्कृति जिसकी धरोहर है, तो वहीं इस माटी ने जंगें भी देखी हैं और फतेह की बाजी को भी अपने नाम किया है और दिए हैं देश को ऐसे होनहार सपूत जिनके शौर्य को सुनकर आज भी दुश्मन दांतों तले उंगली दबाता है। इसी धरा में गोदावरी और कृष्णा की निर्मल धारा से संचित आंध्र प्रदेश के सूर्यपेट में पिता बकुमल्ला उपेंद्र के घर नन्हे संतोष का जन्म 13 फरवरी सन 1983 को हुआ। माँ मंजुला और पिता उपेंद्र के लाड़ प्यार और निगरानी में नन्हे संतोष का बचपन परवान चढ़ने लगा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई। सहपाठियों और अपने शिक्षकों के बीच संतोष ने एक होनहार और कामयाब छात्र की छवि बनाई। पढ़ाई में चूंकि संतोष अव्वल आते, इस नाते उनके काबिलियत को भांपते हुए, उनकी रुचि और रुझान को देखते हुए उन्हें विजयनगरम जिले के कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सभी क्रियाकलापों और उत्कृष्ट शैक्षणिक

मुहिम की निगरानी की और एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए, जिनके हौसले और कूटनीतिक रणनीति के चर्चे अक्सर हुआ करते थे। दुश्मनों में इनका खौफ इस कदर बरकरार था कि कई बार पीछे हटना और दुम दबाकर भागना ही मुनासिब समझा।

27 नवंबर सन 2000 को बी संतोष बाबू राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 105 कोर्स में शामिल हुए और फिर 2004 में भारतीय सैन्य अकादमी चले गए। एनडीए में वो नवंबर स्क्वाड्रन से संबंधित थे। 10 दिसंबर 2004 को उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। यहाँ भी श्रेणी में अव्वल आने पर जम्मू कश्मीर राज्य में तैनात किया गया। 10 दिसंबर 2006 को कैप्टन, 10 दिसंबर 2010 को मेजर का पदभार ग्रहण किया। 2017 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने और पुनः एक बार 2019 में जम्मू कश्मीर इलाके के संवेदनशील

लेकिन दुश्मन अपनी करतूतों से कब बाज आता है। यूं तो भारत की उत्तरी पूर्वी सीमाएं हमेशा से ही संवेदनशील रहीं और इसी सीमा से लगे पड़ोसी दुश्मन की कई चालें नाकाम भी की गईं। फिर भी दबे शोलों की आग हल्की सी हवा से रह रहकर भड़क ही जाती, इसे बुझाने की हर संभव कोशिशें नाकाम हो जाती। पूर्वी लद्दाख की सर्द वादियों में दुश्मन के सीने की सुलगती आग ने धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख को अपनी जद में लेना शुरू किया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रह रहकर दुश्मनों की आवाजाही की निशानदेही लगभग पुख्ता हो गई। विशेष जयमाला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला। जानबूझकर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की मर्यादा को लांघते हुए शत्रु सैनिकों ने आगे बढ़ते हुए कई बार घुसपैठ की कोशिश की। बहस बढ़ती और गश्त पर रहे भारतीय सैनिकों के खौफ से ये दबे पांव आगे बढ़ते शत्रु सैनिक गायब हो जाते, लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर फिर वही कि पीठ पर छुरा भौंकने की फितरत को लिए ये सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा में रेंगते हुए नजर आते। न ये वाकया थमने का नाम लेता और न ही इनकी फितरत बदलती। सन 2020 में ये झड़प काफी बढ़ गई, जिसमें 14 जून को पीएलए सैनिकों के एक समूह ने 6 जून को किए गए समझौते और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में

भारत की धारणा को दरकिनार करते हुए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के समीप न सिर्फ टेंट लगाए बल्कि गलवान नदी के इलाकों में ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बना दी गई और आती जाती इनकी कुछ बख्तरबंद गाड़ियों को भी साफ देखा जा सकता था। चिंगारी के शोलों में बदलने का अंदेशा सेना के आला अधिकारियों को हो गया। यहां बढ़ते खतरे को भांपते हुए सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना के शेरदिल सिपाही कर्नल संतोष बाबू को सेना के हेडक्वार्टर तुरंत तलब किया गया और फौरन पूर्वी लद्दाख के इस इलाके रवाना किया गया। 16 बिहार रेजिमेंट के होनहार अफसर कर्नल बी संतोष बाबू ने इस खतरे से निपटने और एक निश्चित प्लान के तहत पूरी मुहिम को अंजाम देने का निश्चय कर पूर्वी लद्दाख के इस इलाके पहुंचे।

0: गणपति बप्पा।
1: बप्पा आए ते हर घर मुस्कुराए। गणेश उत्सव दी हर खुशी विच कोलो अपना पन ते हर तैयारी विच रखो शुद्धता। वेरका दे दूध, दही, देसी घ्यो ते पनीर नाल। वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां दिलो वधाइयां।

ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान कमांडिंग अफसर कर्नल बी संतोष बाबू को दुश्मन सैनिकों की निगरानी चौकियों की गतिविधियों और उनकी अटैकिंग पोजीशन को बारीकी से समझना था। एक तरफ ये तस्वीर थी तो दूसरी तरफ पीएलए के साथ सभी उच्च

स्तरीय वार्ता बेनतीजा नजर आती थी, क्योंकि दुश्मन की कथनी और करनी दोनों में बड़ा अंतर था। मौसम बेहद सर्द था। शाम होते ही नीले आसमान के तले सफेद बर्फ की हसी वादियां, हाड़ कपा देने वाली ठंड, ऊंची बर्फीली चोटियां और गहराई में बसी गलवान नदी का बर्फीला पानी। धीरे धीरे शाम रुखसत हुई और रात ने दस्तक दी। 15 और 16 जून की वो सर्द सियह रात, जब बर्फ से ढकी चोटी की दुर्गम ऊंचाई पर बैठे दुश्मन सैनिकों की सुगबुगाहट कभी तेज तो कभी खामोश हो जाती। सामने से कुछ और नजारा कि जैसे खतरा टल ही गया हो, लेकिन हमारी सेना के जवान और कर्नल बी संतोष बाबू की निगाहें इस धुंध से कहीं आगे का मंजर देख चुकी थीं। एक पल को लगा कि दुश्मन सैनिक शायद पीछे हट गए हों, लेकिन ये तो कोरा वहम ही है। ये संतोष बाबू समझ चुके थे। ऊपर ऊंचाइयों पर पीछे की तरफ डेरा डाले दुश्मन सैनिक नीचे की तरफ से भारतीय सैनिकों के आने की ताक में घात लगाए बैठे थे। अपनी सैनिक टुकड़ी को पूरी रणनीति का खाका पहले से ही समझा चुके कर्नल बी संतोष बाबू ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखने की हिदायत दी। हल्की सी आहट भी हमले का सबब हो सकती थी। कर्नल बी संतोष बाबू इस बात का भी आकलन रखते थे कि ऊपर चोटी पर ज्यादा भारी भरकम हथियार रखने की गुंजाइश तो कम ही लगती है, लेकिन किसी भी वक्त हमले का अंदेशा पूरा था।

0: साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आप सुन रहे हैं 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस

0: ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: कर्नल बाबू ने इशारों इशारों में अपने सैनिकों को समझा दिया कि अब ये शक यकीन में बदल चुका है। दुश्मन की जानिब जैसा अंदेशा था ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय सैनिकों ने बाबू की निगरानी में कदम बढ़ाने शुरू किए। अब तक ये अंदेशा हो चुका था कि ये मुठभेड़ इतनी आसान न होगी। इधर शत्रु सैनिकों ने एक के बाद एक तेजी से बर्फीली ढलानों का रुख करते हुए भारी भरकम लोहे की छड़ों और पत्थरों से लैस हमारे सैनिकों की तरफ हमले शुरू किए। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे बढ़ इस इलाके पर धाक जमाने की फिराक में आगे बढ़ते सैनिकों को कर्नल संतोष बाबू ने रोका। असल मायने में इनकी तादाद का अब भी कोई पता नहीं था। पीछे हटने को लेकर बढ़ती झड़प और फिर धक्का मुक्की पर उतर आए दुश्मन सैनिकों की तादाद एक के बाद एक टिड्डी दल की तरह नजर आने लगी। इनकी थाह का कोई पता न था। वो नीचे की तरफ उतरते और कर्नल और उनके साथी आगे बढ़ते हुए इन सैनिकों को पीछे की तरफ जाने की चेतावनी देते। बात बढ़ते बढ़ते जोर जबरदस्ती पर आ गई। अब भी ऊपर ठिकाने पर कुछ और दुश्मन सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने फ्रंट लाइन सैनिकों के साथ कमान संभाली। वो इस बात को लेकर अड़े रहे कि दुश्मन आगे न बढ़ने पाए। जैसे जैसे रात बीतती गहमा गहमी बढ़ती गई कि अचानक ऊपर छुपे दुश्मन सैनिकों ने भारतीय सैन्य टुकड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस तेज रफ्तार पत्थरबाजी ने शत्रु सैनिकों के मंसूबों को साफ कर दिया कि और पाने की भूख और प्यास बेजा खून बहाकर भी नहीं मिटती। न सिर्फ पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले बल्कि दुश्मन सैनिकों ने भारी भरकम लोहे की छड़ों और धारदार हथियारों से भी वार शुरू कर दिया। इस यकायक हमले का माकूल जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने भी बहादुरी से इनका सामना किया। इनके हथियार इन्हीं पर दे मारे, शिकस्त देते हुए और साथ ही फेस ऑफ के नियमानुसार परिस्थिति से निपटते हुए हमारे सैनिक अटैकिंग पोजीशन पर रहे और अपनी जमीन पर डटे रहे। इस गुत्थम गुत्था में कर्नल और उनके कुछ सैनिक पूरी तरह से घायल हो गए। कर्नल बी संतोष बाबू फिर भी अपने सैनिकों के साथ डटे रहे। आखिरकार अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने पूरी कुशलता के साथ घायल अवस्था में भी इस आमने सामने की जंग को अपने नाम किया। कर्नल बी संतोष बाबू ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक ऐसी जंग फतेह को अंजाम दिया जो इतिहास के पन्नों पर कम ही नजर आती है। उनके जिस्म जहां से अविरल बहती लहू की धारा से भी बेपरवाह रहे वो। जख्मों का दर्द तो फिर कहां, दिल में अब भी वही जज्बा, आंखों में वतन परस्ती का वही सुरूर, बुलंदियों को छूती तिरंगे की वही शान। मातृभूमि से ये वही रिश्ता है जो सांसों के टूटने के बाद भी नहीं टूटता। धीरे धीरे इस विशाल गगन के अंतहीन पथ पर वो सितारा चल दिया जिसकी निगहबानी में कुदरत ने सिजदा किए। कर्नल बी संतोष बाबू की सांसें थम गईं, हवाओं का परचम था, चारों दिशाएं सलाम करती रहीं। मां भारती के एक और सपूत ने मातृभूमि के लिए जीने और मरने का मर्म सबको समझाया। वतन की आन बान और शान के लिए जीना और फना होना चंद खुश नसीबों को ही नसीब होता है। और ऐसे ही थे मां भारती के शेर दिल सिपाही कर्नल बी संतोष बाबू।

साथियों आपको बता दें, कर्नल बी संतोष बाबू ने वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े रहे और कि वो संघर्ष के दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी अपनी सेवाएं उन्होंने दी। DRC और दक्षिण अफ्रीकी सेना द्वारा कांगो के एंडुमा डिफेंस यानी NDC विद्रोहियों के खिलाफ भी सेवाएं दी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में उच्च ऊंचाई सेवा पदक भी प्राप्त किया। भारतीय सेना के एक ऐसे होनहार अफसर जिन्हें सेना में उनके आला दर्जे के काम और समर्पण के लिए जाना जाता है। पूर्वी लद्दाख में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी में तैनात 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू को अपनी जमीन से दुश्मन सैनिकों को खदेड़ने, इस मुहिम को सफलतापूर्वक अंजाम देने, कुशल रणनीति, सफल निर्देशन, सूझबूझ, अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।

और जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित 16 बिहार रेजिमेंट के जांबाज अफसर कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू की।

आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आज तूने बड़ी देर कर दी बेटा।
1: माँ देरी की मत पूछ, बहुत भूख लगी है, बस खाना दे दे जल्दी से।
0: तू हाथ तो धो ले, मैं खाना परोसती हूँ।
1: ठीक है माँ। अरे हाँ माँ, कोई चिट्ठी विट्ठी आई है क्या?
0: हाँ, तेरे भैया की दिल्ली से खत आया है।
1: क्या लिखा है माँ?
0: लड़की वालों से मिलकर उसने तारीख पक्की कर डाली है, इसी महीने की 29 तारीख है।
1: इसी महीने की?
0: हाँ।
1: पर माँ मैं तो बुधवार को बाहर जा रहा हूँ और फिर अगले महीने लौटूंगा।

0: कहाँ जा रहा है तू?
1: इलाहाबाद।
0: इलाहाबाद?
1: हाँ माँ, वहाँ पर ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन हो रहा है ना, फिर वहाँ से हम लोग बेंगलोर जाएंगे, इसीलिए पूरे एक महीने के बाद ही लौट पाऊंगा।
0: कान खोल कर सुन ले, अब की बार मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। फिर इतनी उम्र हो गई है, कब तक मैं खाना बनाकर खिलाती रहूंगी तुझे?
1: चाहे कुछ भी हो जाए माँ, तेरे हाथ का खाना जितना स्वाद और दुलार भरा होता है ना, क्या किसी और के हाथ का हो सकता है?
0: बस बस, अच्छा अब मस्का मत लगा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म करती हूँ।
1: अच्छा माँ।

0: क्या बात है सुधीर बाबू, आज सुबह सुबह आप पर इतनी जल्दी।
1: पढ़े बाबू, बात ही कुछ ऐसी है, समझ में नहीं आता क्या कहूं और क्या ना करूं।
0: सुधीर, इस संसार में बहुत कम लोगों की किस्मत ऐसी होती है जिन्हें हर बात समझ आ सके। फिर हम मिडिल क्लास के लोग सारी उम्र सोचते रहते हैं पर समझ फिर भी नहीं आती और खत्म हो जाती है जिंदगी।
1: बड़े बाबू, मैं बहुत परेशान हूं और आप मेरी परेशानी को थोड़ा सा भी सीरियस लेने की कोशिश नहीं कर रहे।
0: परेशान होने से क्या फायदा, फिर वो देखो बाबू राम भी आ गया, जल्दी आ गया आज। भाई बाबू राम
2: जी आया सरकार।
3: जय राम जी की बड़े बाबू।
0: जय राम जी की, जय राम जी की।
2: आप दोनों
0: जल्दी आने की बात बाद में बताते हैं, पहले जाकर दो कप गर्मा गर्म चाय ले आ।
3: जी अभी लाया। और कुछ? अब मेरा मतलब कुछ खाने वाने को?
0: और कुछ नहीं, बस दो कप चाय, स्ट्रांग होनी चाहिए।
3: अरे बड़े बाबू, आप तो जानते ही हैं कि बाबू राम चाय हमेशा कड़क लाता है, अभी लाया।
0: हाँ तो सुधीर, क्या मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ? भाई अगर कुछ बताओगे नहीं कि समस्या क्या है, तब तक हम अपनी एक्सपर्ट राय कैसे दे सकते हैं, जल्दी कहो।
1: अब क्या कहूँ बड़े बाबू, और क्या छुपाऊँ। बात दरअसल ये है बड़े बाबू कि मेरी शादी तय हो गई है।
0: अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, बकरे की गर्दन कब तक छुरी से बचती रहेगी। ये तो खुशी की बात है कि तुम भी हमारी तरह गृहस्थी की चक्की पीसोगे।
2: लेकिन बड़े बाबू ये सब तो मुझे मंजूर है, लेकिन लेकिन शादी की डेट मुझे सूट नहीं करती।
0: शादी की डेट सूट हो या ना हो, लड़की सूट करनी चाहिए, तुम्हें तो एकदम पार्टी का बंदोबस्त करना चाहिए।
2: बड़े बाबू आप क्यों मेरी परेशानी को और बढ़ाना चाहते हैं।
0: शादी की डेट को लेकर लगता है तुम्हारी वाकई ही तबीयत कुछ खराब है।
2: यही तो बात है बड़े बाबू। बड़े बाबू बात यह है कि कल दिल्ली से बड़े भैया का खत आया है।
0: अच्छा।
2: उन्होंने लिखा है कि इस महीने की 29 तारीख को शादी तय हो गई है।
0: बहुत अच्छी बात है।
2: और जबकि मैं इधर अगले बुधवार को इलाहाबाद जा रहा हूँ ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन पर।
0: हाँ।
2: फिर घूम फिर कर पूरे एक महीने बाद ही लौटूंगा, ये भी तो आप जानते हैं ना।
0: बस इतनी सी बात ने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है।
2: बड़े बाबू आपके लिए तो ये सिर्फ इतनी सी बात है, पर मेरे लिए तो
0: इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो आज मंगलवार है।
2: हाँ?
0: आज ही एक अर्जेंट स्पीड पोस्ट से लेटर डाल दो।
2: लेटर
0: कल मिल जाएगा दिल्ली।
2: हाँ?
0: सैटरडे तक जवाब आ जाएगा, बस स्पीड पोस्ट से भेज दो।
2: अरे हाँ बड़े बाबू, ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी, अभी लिखता हूँ लेटर।
0: बाबू राम जैसे ही चाय लेकर आए उसे दे देना, ये स्पीड पोस्ट में लेटर डाल आएगा।
2: हाँ?
0: कल उन्हें मिल जाएगी।
4: बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया।
1: माँ तू तो खामखा ही नाराज हो रही है, मैं शादी से इनकार थोड़े ही कर रहा हूँ।
4: इनकार नहीं कर रहा है, पर बहाने तो टाल मटोल के कर रहा है ना। तेरे लिए कंपटीशन में जाना जरूरी है पर शादी जरूरी नहीं।
1: माँ देख आज उन्हें लिखा है ना, कल भैया को मिलेगी चिट्ठी
4: तो
1: एक दो दिन सलाह करने में लग जाएंगे और शनि

0: बार तक भैया हमें वापस लिख देंगे। अब तो माँ उनकी चिट्ठी का इंतजार कर।
1: ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि आज तारीख तय कर लो, कल बदल दो। फिर वहां लड़की वाले हैं, बार बार तारीख बदलेंगे तो क्या लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे?
0: माँ अभी से तो उनकी चिंता करने लगी, और मैं जो ऑल इंडिया लेवल में नाम कमाने जा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं।
1: बेटे, हर बेटे की माँ अपने बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहती है, पर हर माँ का सपना उसकी औलाद होती है।
0: ओ माँ,
1: घर में बहू आ जाए तो मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कम से कम मेरे आखिरी दिनों में भगवान के लिए कुछ समय निकाल लेने दे।
0: ओ मेरी प्यारी माँ, तू तो नाहक ही परेशान हो रही है। देख देख माँ, मैं शादी से भाग नहीं रहा, बस कुछ ही दिन के लिए तो इसे आगे डाल रहा हूँ।
1: मैं तुझे क्या कहूँ बेटा, इतने सालों में जाकर योग बना है, अब भगवान जाने क्या होने को है।
0: माँ तुम परेशान नाहक हो रही हो, बस मेरी चिट्ठी के जवाब का इंतजार तो करो।
1: क्या कहूँ बेटा,

0: अरे सुधीर, आज भी आप जल्दी? भाई लगता है आप जाने से पहले अपनी सीट का सारा काम खत्म कर देना चाहते हैं। अच्छी बात है।
1: बड़े बाबू, ऐसी बात करके आप मेरे परेशानी को और मत बढ़ाइए प्लीज।
0: अच्छा तो जनाब आज भी परेशान हैं? जरा हम भी तो सुने, आखिर कुंवारों को रोज रोज परेशान होने की क्या जरूरत है, और वो भी सुबह सुबह।
1: क्यों, क्या कंवारे इंसान नहीं होते? उनका घर नहीं होता? उनकी उनकी कोई जरूरत नहीं होती?
0: तुम तो गुस्सा कर गए। मेरा तो मतलब सिर्फ
1: मेरा
0: बस यूं
1: मतलब
0: ही कह दिया। खैर आप चाहें तो मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकते हैं, शायद मैं आपके काम आ सकूं पहले की ही तरह।
1: आप जानते हैं कि शादी की डेट बदलने के लिए मैंने पिछले हफ्ते स्पीड पोस्ट से दिल्ली को लेटर डाला था।
0: हाँ याद है, अब तो जवाब आ गया होगा। कहो नई कौन सी तारीख तय हुई?
1: आपको यह भी मालूम है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं?
0: हाँ, वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारा LTC एडवांस का केस बनाया है।
1: और आपके कहने से मैंने चिट्ठी लिखकर बाबूराम को दे दी थी। उसे 15 रुपए भी दिए थे कि वो उस चिट्ठी को स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दे,
0: ये तो अच्छा ही किया जो स्पीड पोस्ट से भेज दी।
1: ताकि जल्दी जवाब आ सके।
0: बाबूराम चिट्ठी ले गया था क्या?
1: हाँ ले तो गया था।
0: बाबूराम ने जरूर डाली होगी, पर अब तक जवाब आ जाना चाहिए था।
1: यही तो मैं सोच रहा हूं कि अब तक जवाब क्यों नहीं आया।
0: 1 मिनट। बाबूराम
2: जी। जी बड़े बाबू, आपने मुझे याद किया बड़े बाबू।
0: जी हाँ, आप ही को याद किया है। आपको पिछले हफ्ते दफ्तर का सामान लाने बाजार भेजा गया था सुबह सुबह।
2: जी हाँ, मैं लाया तो था सामान। क्या पूरा नहीं निकला बड़े बाबू?
0: उस दिन तुम भी सुबह जल्दी आए थे।
2: जी आया होऊंगा।
0: उस दिन मैं और सुधीर बाबू भी बहुत जल्दी आए थे।
2: आज ही हो सकता है।
0: तुम्हें आते ही हमने 2 कप चाय लाने के लिए भेज दिया था।
2: आज ही दफ्तर में सारा दिन चाय ही तो देता रहता हूं, उस दिन सुबह ही धोने लग पड़ा होऊंगा।
0: चाय लाने के बाद तुम्हें बाजार के काम के लिए भेज दिया गया।
2: बड़े बाबू, आज फिर बाजार जाना है क्या?
0: उस दिन सुधीर ने तुम्हें एक चिट्ठी दी थी कि अर्जेंट है, ये बड़े डाकखाने जाकर स्पीड पोस्ट करा देना।
2: आदि हो सकता है।
0: वह चिट्ठी तुमने डाल दी थी या नहीं?
2: वो चिट्ठी? हाजी वो चिट्ठी।
0: बोलो बोलो क्या हुआ उस चिट्ठी को? स्पीड पोस्ट से भेजनी थी, तुम्हें स्पीड पोस्ट के लिए 15 रुपए भी दिए थे।
2: उन 15 रुपए से मुझे चिट्ठी की बात याद आ गई।
1: जल्दी बताना क्या याद आ गया।
2: अजी साहब, मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ। जब मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा मेरी जेब में 15 रुपए फालतू कैसे हैं।
0: अरे वो फालतू कैसे हुए? स्पीड पोस्ट की टिकटों के लिए थे वो पैसे।
2: अजी साहब मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाजी उस वक्त तो मेरे दिमाग में यही आया ना कि मेरी जेब में 15 रुपए फालतू हैं।
1: बात

0: बिना मतलब के बढ़ाता ही जा रहा है। हम तुमसे चिट्ठी की बात पूछ रहे हैं और तुम 15 रुपए की कहानी डालते जा रहे हो।
1: अरे साहब, वही तो बताने जा रहा हूँ।
2: तुम बता कहाँ रहे हो, उल्टा पहेली बूझ रहे हो। जल्दी बता चिट्ठी का क्या हुआ।
1: साहब, चिट्ठी की बात भी 15 रुपए से ही तो जुड़ी हुई है।
0: बड़े बाबू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तो मुझे चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ऊपर से ये बात का बतंगड़ बनाता जा रहा है।
1: साहब माफ करना, अगर आप मुझे बात बताने का मौका ही नहीं दोगे तो मैं पूरी बात कैसे कह पाऊंगा।
0: अबे जल्दी बता, नहीं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है।
1: अरे साहब, आप जानते ही हैं कि इस महंगाई में थोड़ी तनख्वाह वाले 15-20 रुपए किलो के आम कैसे खा सकते हैं। बच्चे रोज आम खाने की रट लगाए रहते थे। मैं जैसे ही मंडी में से गुजरा, एक जगह 15 रुपए किलो के आम बिक रहे थे। उन फालतू 15 रुपए से मैंने 1 किलो आम खरीद लिए।
0: आम ले लिए।
1: 1 किलो में सिर्फ 4 आम चढ़े, चारों बच्चों के हिस्से के एक एक आया। हम मियां बीवी तो फिर भी आम खाए बिना रह गए।
0: बड़े बाबू, मेरा दिल करता है कि इस बाबू राम के बच्चे का सिर फोड़ दूं। हम कितनी देर से बकवास करते जा रहे हैं कि उस चिट्ठी का क्या हुआ, उस चिट्ठी का क्या हुआ, और उसका कोई

0: 15 रुपए किलो के आम बिक रहे थे, उन फालतू 15 रुपए से मैंने 1 किलो आम खरीद लिए।
1: आम ले लिए?
0: 1 किलो में सिर्फ 4 आम चढ़े, चारों बच्चों के हिस्से के एक एक आया। हम मियां बीवी तो फिर भी आम खाए बिना रह गए।
2: बड़े बाबू, मेरा दिल करता है कि इस बाबू राम के बच्चे का सिर फोड़ दूं।
3: हम कितनी देर से बकवास करते जा रहे हैं कि उस चिट्ठी का क्या हुआ, उस चिट्ठी का क्या हुआ, और उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा।
0: अरे साहब, आप तो खाम खा गुस्से हो रहे हैं। साहब जी, 15 रुपए की बात पूरी तरह से उस चिट्ठी के साथ जुड़ी हुई थी। अगर मुझे चिट्ठी का ध्यान आ जाता तो वो 15 रुपए मुझे क्यों फालतू लगते।
4: इसका मतलब सुधीर जी, बाबू राम ने चिट्ठी पोस्ट नहीं की।
3: मुझे भी यही लगता है। तो बाबू राम वो चिट्ठी कहाँ फेंकी?
0: अजी, फेंकनी कहाँ थी, उस दिन के बाद इस पैंट को मैंने आज ही पहना है। वो चिट्ठी भी इस पैंट की जेब में पड़ी है।
1: माय गॉड,
0: ये रही, मैं तो भूल ही गया था। खैर, अब डालता हूँ जी, और बहुत ही अर्जेंट है तो सुधीर बाबू ये लीजिए, आप खुद ही डालाइए। और आप वो 15 रुपए तो मैं पहली तारीख को ही दे पाऊंगा।

अभी आप सुन रहे थे सुनील हेनरी अब्राहम की लिखी झलकी चिट्ठी, निर्देशक थे गुरमीत रामल मीत। ये झलकी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्हा भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है, तो उनको उनके जन्मदिन पर विविध भारती परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के गाने। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना केके की आवाज में है, फिल्म का नाम है वो लम्हे, गीत लिखा नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रीतम का है।

0: चित्रलोक का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।
1: पसंद श्रद्धा ते श्रद्धा विच शुद्धता इस गणेश उत्सव अपने घर दी हर तैयारी विच लियाओ वेरका शुद्ध दुध दही देसी घ्यो ते पनीर वेरका वल्लों तुहानू गणेश उत्सव दियां लख लख वधाइयां।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना आशिकी 2 से लिया है हमने। इसे गाया है श्रेया घोषाल ने, गीत संदीप नाथ का है, संगीत अंकित तिवारी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम

0: हम और सामना करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
0: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते

0: एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
1: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल एटीएस टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और एनआईए ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
2: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
3: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
2: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
4: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे

0: हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
1: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ। ਸਰੋਤਿਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਕੇ ਲਈ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕਰਾਂਗੇ।
3: कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम चाहत फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। इसे लिखा है देव कोहली ने, संगीत अनु मलिक का है।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है नाम, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और अनुपमा देशपांडे की आवाजों में सुनिए काश फिल्म का गाना, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज में मिलाप फिल्म का गाना। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत व्रजभूषण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: ਵਈ ਮੋਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
1: ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, HIV ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
1: HIV
0: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, HIV ਕਿਵੇਂ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰਕਸ਼ਿਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: आज के फनकार।

महेश भट्ट, फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: महेश भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहाँ मिला नहीं ज़्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहाँ पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहाँ एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आया मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी। विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी हैं, शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाई डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years wasted। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था, रजनीश एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई, अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

0: जैसी नजर।
1: अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का, मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर

ink has dried on the paper, I am filled with this feeling of revulsion. कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किस्से कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विथ सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: हमारी संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और काश जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान सा अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेस ख़त्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये, हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज़्यादा लंबा नहीं था, 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जब पिछले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ, अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जिसके लिए मैं इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा हैं, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कन्फ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूँ। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: फिल्म जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूँ, मानता रहा हूँ। और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: प्यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

महेश भट्ट द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

0: 2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3।
1: लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने। आज के

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: छाया गीत में आज ऐसी नगमे जिनके दो संस्करण हैं, हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अब वैसी नींद कहां जैसी बचपन में आती थी। असली नींद सचमुच बचपन की ही तो थी, पवित्र, निश्चल, बेफिक्र और असीम नींद। अब तो नींद में आहटे हैं, आशंकाएं हैं, सपने हैं, उनींदापन है, बेचैनी है और हैं तरह तरह की फिक्र। ऐसे में याद आती हैं माँ की थपकी।

लोरियां दुनिया की सबसे पवित्र रचनाएं, दुनिया की सबसे पवित्र कविताएं हैं हर भाषा की लोरियां। लोरियां बची रहें, बचा रहे बचपन, बची रहे ममता। आइए इस लोरी को सुनें जो दो अलग अलग आवाजों में आप तक पहुंचेगी।

तुम्हारी आंखों से रोशन हैं हमारी शाम और सुबह, हमारी दुनिया में रंग हैं तुम्हारी आंखों की वजह से। तुम हमारी दुनिया की चमक हो, तुम्हारी आंखों में बो रखे हैं हमने अपने कुछ सपने। देखो संभाल कर रखना हमारे सपनों की ये नाजुक दुनिया।

0: क्या है।
1: आज के छाया गीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: था क्या।
1: फिल्म चिराग, मजरूह सुल्तानपुरी, मदन मोहन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं हमारे साथ ही जरूरत है, इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो तुसी सुन रहे हो पंजाबी गीतां नाल सजिया प्रोग्राम सुरसांझ। ते प्रोग्राम दा अगला गीत मनप्रीत अख्तर दी आवाज़ विच।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट।

0: लगाना, तीसरा संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोतो, आज दे प्रोग्राम सुरसांझ दा आखिरी गीत गुरदास मान दी आवाज़ विच।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकतानगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।

0: relationship between the two countries.
1: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। ਸਰੋਤਿਓ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5:55 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ।